रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: का सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर?
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजेपी के आरजे प्रदीप। और इस प्यारी सुबह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। एक नया सवेरा, नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन हर दिन की शुरुआत हम एक नए आयाम के साथ, नए काम के साथ करनी चाहिए। और आज भी बहुत सारी बातें होंगी काम से जुड़ी हुई, जी हाँ, करियर से जुड़ी हुई। सुनते रहे रेडियो केदार, बात हिमालय की।
1: नमस्कार, रेडियो केदार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आशा करते हैं कि आज का सूर्यदेव आपके जीवन में नई ऊर्जा, शांति और खुशियां लेकर आया होगा। सुबह की ये बेला जब मन शांत होता है सबसे उत्तम समय है स्वयं से जुड़ने का, ईश्वर का स्मरण करने का। तो आइए इस मधुर सुबह का आगाज करते हैं उस परम शक्ति का नाम लेकर। तो सुनते हैं यह मधुर भजन।

संगीत में वो शक्ति है जो बिना शब्दों के भी आत्मा से बात कर लेती है। दोस्तों, सुबह का ये समय हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक नई शुरुआत है। हम अक्सर भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने को भी समय देना भूल जाते हैं। आज बस कुछ पल निकालिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि जीवन का हर पल कितना अनमोल है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की। कृतज्ञता यानी धन्यवाद देना। क्या आप जानते हैं, यह केवल एक अच्छा शिष्टाचार नहीं बल्कि मन की सबसे बड़ी औषधि है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छी सेहत, सिर पर छत, परिवार का साथ, तो हमारे जीवन से शिकायतें दूर होने लगती हैं। एक बार धन्यवाद देकर देखिए आपका ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाएगा। यही कृतज्ञता हमें ईश्वर के करीब लाती है। तो आज का संकल्प यही है, आज कम से कम 5 चीजों के लिए हृदय से धन्यवाद कहें। इससे पहले सुनते हैं एक और मधुर भजन।

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम मनोहर मोहन गिरधर हरि ओम।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? क्योंकि यह समय प्रकृति के साथ जुड़ने का है। यह ध्यान लगाने, पढ़ने या कोई भी रचनात्मक काम करने का सबसे बेहतरीन समय है। लेकिन अगर आप देर से उठे हैं तो कोई बात नहीं, जिस पल जाग जाओ उसी पल को अपना ब्रह्म मुहूर्त मान लो। बस अपनी पसंद का एक अच्छा काम करो। अब सुनते हैं एक और भजन।

0: इन भजनों की लय से हमें जीवन की लय मिलती है। आपने गौर किया, हर भजन में एक सीख छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं अध्यात्म जंगल या पहाड़ों में मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अध्यात्म तो हमें रोजमर्रा के जीवन में भी मिलता है। दूसरों की मदद करना, सच बोलना, प्रेम से बातें करना, यही सबसे बड़ा धर्म और अध्यात्म है। अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना भी एक तरह की पूजा ही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने संत से पूछा, मैं हमेशा खुश कैसे रहूं? संत ने कहा, रोज सुबह आईने में देखो और कहो कि मैं सबसे खुश इंसान हूं। राजा ने रोज ऐसा किया, पर कुछ दिनों बाद फिर दुखी हो गया। वह संत के पास गया। संत मुस्कुराए और बोले, राजा तुम सिर्फ बोलते रहे पर महसूस नहीं किया। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस कृतज्ञ होकर और दूसरों को खुशी देकर उसे जगाना है।
1: अब वक्त हो गया है एक और भजन का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

सुबह का यह कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, पर ये ऊर्जा, ये शांति इसे अपने साथ पूरे दिन लेकर चलिएगा। याद रखिएगा, हर दिन एक नई कैनवास है जिस पर आपको अपने कर्मों का रंग भरना है, तो आज उसमें प्रेम, शांति और सेवा के रंग भरिएगा। आज का विचार है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जो वह सोचता है वही वह बन जाता है, इसलिए हमेशा ऊंचा और सकारात्मक सोचिए। मेरी कामना है आपका ये पूरा दिन मंगलमय हो और आप हर काम में सफल हों और अपनों का प्यार आपको मिलता रहे। आज का सफर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे इसी समय कुछ और भजनों, गीतों और आध्यात्मिक बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान और यहां हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से। आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका स्वागत है रेडियो केदार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, जैसा कि अभी हम बात करेंगे मिलेट पर, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, श्री अन्न का इन दिनों बहुत प्रचार भी हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं श्री अन्न पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़ने का जो यात्रा है, जो सफ़र है, उस पर आपसे जानना चाहूँगा।
1: मैं जो हूँ भारतीय वन्य जीव संस्थान से अभी नहीं जुड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है। मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, और कई प्रोजेक्ट्स किए मैंने इसमें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए इकोलॉजी से रिलेटेड। हम लोगों का बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट होता है इकोसिस्टम का आस्पेक्ट होता है, जिसमें हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो, और लोगों से बहुत हमारा जुड़े हुए रहते हैं हम लोग, क्योंकि हर जंगल के इर्द गिर्द लोग ही हैं तो हमारा लोगों से भी बहुत संबंध है। तो ये जर्नी धीरे धीरे धीरे धीरे मिलेट तक, मेरे कुछ इसमें पर्सनल रीजंस भी थे इसमें आने के, कुछ हेल्थ इश्यूज थे घर में जिसकी वजह से मैंने खुद इसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बेनिफिट मिला। फिर मैं इसी में घुस गई, इसी में ट्रेनिंग करने लगी, इसी की जानकारी मैं हासिल करने लगी, और जब मैं इसके बारे में और जानने लगी तब मुझे पता चला कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना यूज़फुल है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये हमारी कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी एग्रो बायोडायवर्सिटी में। आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए, मतलब अब ये जो वन्य जीव और जंगली जीवों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक फसल उनके भले के साथ भी जुड़ी हुई है।
0: सवाल ये है कि आप भारतीय वन्य जीव संस्थान में आपने मास्टर इन वाइल्ड लाइफ साइंस, उसके बाद सीधा मिलेट, जो ये जो क्रम है इसको जानना चाहूंगा।
1: मैं सीधा मिलेट में नहीं आई हूँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं भारतीय वन्य जीव संस्थान से बहुत सालों से जुड़ी हूँ, मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट लिए, कुछ प्रोजेक्ट मेरे कैप्टिव एनिमल्स से रिलेटेड थे, कुछ प्रोजेक्ट मेरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे, जो जंगल के आसपास वाले लोग रहते हैं किस तरह से जंगली जानवरों से वो जूझ रहे हैं, या जंगली जानवर उनकी वजह से किस तरह से जूझ रहे हैं, तो इस तरह का वो था। फिर उसमें मिलेट कैसे आया कि ये मेरा पर्सनल था, जब मैं ये सब कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरी बिटिया की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि उसको, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, तो मुझे एक बार याद है वो अभी आठवीं क्लास में थी शायद, रात को हमें 12 बजे फ़ोन आया कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में, और वो बैंगलोर के पास पढ़ रही थी जी। तो हम अगले दिन पहली फ्लाइट पकड़ के गए और जो है उस लड़की को 15 दिन की छुट्टी में लेके आ गए, तो वहाँ पता चला कि उसको बहुत भयानक एलर्जी हो रही थी। मतलब जब मैंने उसको वहाँ पे देखा, उसको ऑक्सीजन लगा के रखा है, लगा मैं बस ये सोच रही थी कि अगली सांस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, मैं इतनी डरी हुई थी उस समय उसकी वो हालत देख के। तो फिर जब मैं वहाँ अस्पताल से निकली तो मुझे याद है इतना बड़ा पॉलीथीन बैग डॉक्टर्स ने मुझे थमा दिया और बोला कि बिल्कुल ये नॉर्मल बच्ची है, कुछ नहीं है, बस इसको 8 बार ये पफ लेना पड़ेगा स्टेरॉइड के पफ, उसके बाद शी इज़ नॉर्मल, वो कुछ भी खेलेगी कूदेगी जो भी है, बिल्कुल खुशी के साथ ये वो सब करेगी। अब इस चीज़ ने जो है, मैंने उसी समय सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ और ये दवाइयों के सहारे नहीं रहेगी, अभी मेरी बच्ची जो है 15 साल की भी नहीं है। जो मैं घर में लेके आई उसे, 15 दिन की मैं छुट्टी में लेके आई, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कुछ नेचुरोपैथ से कॉन्टैक्ट किया, उसको मैंने जिस डाइट में रखा उसमें अनाज की जगह मैंने मिलेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उन 15 दिनों में 6वें दिन में मेरी लड़की के इनहेलर्स ख़त्म हो गए, सब कुछ, मतलब शी वॉज नॉर्मल, मतलब जो ये मेरा अपना। उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे इसके बारे में और जानना है, ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। फिर उसके बारे में, फिर मैं वैसे एक हेल्थ कोच भी हूँ, मैंने वो कोर्सेज बाद में किए, इसके साथ साथ किए मैंने ये कोर्सेज, पर जब मैं इसके बारे में पढ़ने लगी, जानने लगी, मैंने दुनिया भर की ट्रेनिंग्स करी, तब मुझे समझ आया कि ये ना केवल हमारे सेहत के लिए इतने अच्छे हैं, पर हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। ये बात मुझे बाद में समझ आई और हम इस बारे में डेफिनेटली डिटेल में चर्चा करेंगे।
0: मैम, एक इंसिडेंट ने आपकी दिशा बदल दी, आज आप मिलेट्स की तरफ बढ़ गए हैं और आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल की है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं। गंगा जो संरक्षण की हम बात करते हैं, गंगा में पलने वाले जलीय जीवों के प्रति संवेदनशील होने के लिए जो हम बात करते हैं, उस प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो गंगा संरक्षण है उसमें मिलेट कहाँ है और मिलेट का रोल क्या है।
1: मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी हमारे डीन को, डॉक्टर रुचि बडोला। ये बात 2019 की है जब कोविड स्टार्ट हुआ था और तब मैं इस प्रोजेक्ट से अंदर आके नहीं जुड़ी थी, तो उस समय हम लोगों का एक्सेस नहीं था कि हम गंगा प्रहरी से बात कर पाए, मतलब गंगा प्रहरी को बुला पाए किसी ट्रेनिंग के लिए या कुछ कर पाए। उस समय मैम ने मुझे इन्वॉल्व किया इस प्रोजेक्ट में, एज अ रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व किया उस समय, एज अ कंसल्टेंट इन्वॉल्व किया, और हमने 2019 से इतनी वर्कशॉप्स करी, अवेयरनेस की इतनी वर्कशॉप्स करी, मतलब कुकरी की क्लासेस करी ऑनलाइन लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि लोग उस समय बीमार चल रहे थे कि किस तरह से ये आपकी मदद कर सकते हैं आपकी हेल्थ के प्रति। और अब जब आप गंगा के उसकी बात कर रहे हैं, मैं अगर पर्यावरण को लेके बात करूं, आपको मालूम है जो मिलेट है ये जो है श्री अन्न तो इनको बोला ही जाता है, हाँ ये वो सबसे प्राचीन हमारे अनाज है जो कि पहला जब कृषि का डोमेस्टिकेशन हुआ था ना इन अनाजों से हुआ था। तो ये वो कहते हैं ये वो सोना है जो तब के निकला है, धरती ने इतने उबड़ खाबड़ इतने प्रलय देखे पर ये नहीं हिला, इसने फिर भी लोगों का पेट पाला है 5,000-10,000 साल पहलों से। तो ये वो सोना है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे कैसे हमारी गंगा के साथ ये जुड़ सकता है, आपको मालूम है जो हम ये मिलेट है इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप कहा जाता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का मतलब ये है जो क्रॉप किसी भी स्ट्रेस में उग सकती है। आपने देखा कितनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में हमारी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, बट मिलेट एक ऐसी है जो तेज से तेज गर्मी सह सकती है, उसके बाद भी उगेगी और आपका पेट पालेगी। दूसरी बात, इस पौधे को उगाने में, इस घास को उगाने में आपको बहुत कम पानी चाहिए। गंगा हमारी देखिए किस तरह से कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर का जो वाटर टेबल है कितना नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि इतना इरिगेशन के लिए इतना पानी चाहिए हम लोगों को। ये फसल जो है ना 10% लेस पानी लेती है। डॉक्टर खादर वली, ये पता नहीं कितने लोगों ने उनका नाम सुना होगा, फादर ऑफ मिलेट कहा जाता है उनको, उनका कहना ये है कि जितना पानी हम एक साल अपने धान में लगाते हैं उससे आप 20 साल तक मिलेट उगा के लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये पानी के कंजर्वेशन में काम आता है। दूसरा, इसको किसी तरह की पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है गंगा कितनी पोल्यूटेड हो रही है, कितना पेस्टिसाइड क्विंटलों में उसमें जा रहा है खेती का जी। हमारा वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना पोल्यूटेड हो रहा है। ये क्रॉप्स कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, सिर्फ ये चाहती हैं हमें उगा दिया जाए। ये इतनी स्टर्डी होती हैं, इनको किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली नेचुरल है। तो अगर हमें कोई चीज़, हम ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस करें जो हमारा पानी बचा रही है, कोई क्रॉप ऐसी इंट्रोड्यूस करें जो हमारा हमें जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो गंगा के संरक्षण में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि गंगा के जो संरक्षण है उसमें इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने अभी इसकी खासियत भी बताई।
1: लेकिन और भी हैं एन नंबर्स आगे, और आप अभी बताना चाहते, सुनना चाहते तो मैं अभी बता दूं।
0: बिल्कुल मैम, और धीरे धीरे आपसे बातचीत होती रहेगी तो लगातार इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैम मैं जानना चाहूंगा कि जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े हैं, आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच गए, कम्युनिटी से मिले,
1: कम्युनिटी से
0: 11 राज्यों में, बेसिन एरिया में 5 राज्य है जो गंगा जहाँ से होकर गुजरते
1: हैं। हाँ जी,
0: लोगों के पास पहले से एक अलग क्रॉप है जिसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं।
1: एब्सोल्युटली,
0: और क्योंकि उनको लगता है कि भाई गन्ना उगाएंगे तो गन्ना सीधा जाएगा और सीधा पैसा मिल जाएगा।
1: एब्सोल्युटली,
0: तो क्या चैलेंजेस आए, क्या लोगों को जब आपने समझाया इसके बारे में तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे, किस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी?
1: बहुत चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि जैसे आपका कहना है कि पूरे बेसिन में हम जा रहे हैं, उत्तराखंड में तो कम से कम कुछ लोग जानते हैं, अभी भी उगा रहे हैं इसको, और बाकी एरियाज में लोगों ने तो देखा भी नहीं है इसको, इसके बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं है और उनके पास कोई रीज़न नहीं है इनको उगाने का। तो हम लोगों के लिए वो स्ट्रगल तो था ही, पर यही है, हमने वर्कशॉप के दौरान बहुत सारी हमने उन लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात है जैसा हमारा एक कार्यक्रम आपने जलज का भी सुना होगा कंपोनेंट है, उसमें लाइवलीहुड का कंपोनेंट है, तो उसमें हमने क्या किया कि महिलाओं को जोड़ा उससे, और महिलाओं को हमने बहुत अवेयरनेस की क्लासेस दी किस तरह से वो सेहत के लिए अच्छे। जो एक महिला होती है ना घर की, उसका हमेशा फोकस घर होता है, फैमिली का एक हेल्थ, फैमिली का स्वास्थ्य होता है. तो जब आप उनको जोड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट जागता है. आज महिला के हाथ में खेती नहीं हो, बाजार के हाथ चली गई, हस्बैंड्स के हाथ में चली गई. मतलब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम यूपी में क्लासेस ले रहे थे, तो जब मैं यूपी में उनको सिखा रही थी, यूपी में लोग ज्यादातर बाजरा और ज्वार उगाते हैं, वो भी खाने तक नहीं जाता है. उसको वो आधे ही, जब वो थोड़ा कच्चा होता है, उसमें काट दिया जाता है, गाय भैंस को खिलाया जाता है कि उससे दूध की मात्रा बढ़ती है, दूध के लिए बहुत अच्छा होता है. तो मैं उनको ये सिखा रही थी कि तुम सोचो, जानवर का दूध बढ़ रहा है, तो तुम्हारे घर में जो औरतें, बच्चा जिनका होने वाला है या जो अपने बच्चों को पिला रही है, उनके लिए कितना अच्छा होगा ये. तो मैं, हमने बहुत सारी, मतलब उनको सेहत से रिलेटेड कई चीजें, उनको शायद पर्यावरण वाली बात में इतना मजा नहीं आया, पर जो फैमिली की हेल्थ वाली बात थी, वो उनको सच में छू गई. तो एक औरत ने बोला, मैडम आपके कहने पर, मैंने अपने हस्बैंड से इस बारी बोला कि भाई कम से कम जो है आधा क्विंटल बाजरा बचाना, मैं रोटी खिलाऊंगी बच्चों को, घर में बना के रोटी खिलाऊंगी. तो उसके हस्बैंड ने बोला, तुम भी डंगर हो गए हो क्या? तो मतलब कहने का मतलब ये कि उसका कहने का मतलब ये कि मैं चाहती हूँ वो चेंज, पर मुझे शायद अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शायद उसे बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा, या डंगरों को खिला के जो दूध मिले बेच के उससे ज्यादा पैसा मिलेगा. तो और एक तो ये तरीका, और दूसरा हम इनको वैल्यू एडेड आइटम सिखाते हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है. जैसे उससे आप क्या बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, नमकीने बना सकते हैं. तो उनको, लेडीज को भी ये लगता है कि हम कुछ करके बना के जो है ये बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में है डिमांड. एक नीश, एक जो अवेयर लोग हैं, वो चाहते हैं इसके बने हुए आइटम्स खाना. तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उनको एक कमाई का जरिया मिला. मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम लोगों ने जब हम ये कर रहे थे ना, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे, तो उस समय मैंने एक छोटे से एक सेइंग बनाई. तो उसमें मैंने ये बोला कि जो ये कहती थी कि मोटे अनाज का ये किस्सा होगा, नारी तेरी साड़ी में खिस्सा होगा. मतलब वो बात से उनको इतनी वो लगी, कहती मैडम हमको भी पॉकेट चाहिए अपनी साड़ी में, क्योंकि हम इसके द्वारा कमाई कर सकते हैं. क्योंकि पॉकेट एक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक वो रीजन है. कभी भी औरत के किसी भी कपड़े में पॉकेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होती थी. ये पावर भी आदमी को दिया गया था. तो इसलिए जब ये बात हुई, वो इतनी खुश हुई, कह रही मैडम हमें भी अपनी साड़ी में एक हिस्सा चाहिए. अब वो अलग बात है, आजकल साड़ियां आ रही है मोबाइल रखने के, बट मतलब कि दिस वॉज, इस तरह का हमने अवेयरनेस किया. और औरतें जो हमारे साथ बहुत जुड़ी, उत्तराखंड में हम लोगों ने बीज के बदले बीज का एक आंदोलन हमने हर जगह चलाया. वो उत्तराखंड में 25 साल बाद फॉक्सटेल मिलेट उगाया गया, जो हमारे जो गंगा प्रहरी महिला है, उसने अपने खेत में एक, मतलब 25 कह रही मैडम, 25 कह रही, मेरी बूढ़ी नानी दादी कहती थी ये हम लोग खाया करते थे, कि कहती मैम यहाँ किसी ने वो बीज नहीं देखा था. हमने इतनी मुश्किल से वो बीज जमा, मतलब ये सबसे बड़ा स्ट्रगल बीज का है, तो हमने वो बीज प्रोक्योर करके बांटा. ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश में सेम चीज करी.
0: बीज की आप बात कर रहे हैं, बीजों के संरक्षण पर भी एक बड़ा मूवमेंट उत्तराखंड में चला है. तो जो बीज का जो संरक्षण है उसको कैसे कर, क्योंकि गंगा का कंजर्वेशन तो अलग है, बीजों का सीड कंजर्वेशन भी है. तो सीड कंजर्वेशन पे मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे संरक्षित रखते हैं बीजों को.
1: टेक्निकली मतलब कि इसके बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि उसको रखने के तो अलग अलग तरीके हैं, और सबको पता है, महिलाएं किसान सबको पता है, पर बीज होने भी तो चाहिए. विलुप्त हो गए, प्रॉब्लम है विलुप्त हो गए. तो मैं जैसे ही आपको बोल रही हूँ, कोणी बोलते हैं जैसे फॉक्सटेल मिलेट को, कोणी बोला जाता है. कोणी रोज के चावल की तरह खाया जाता था उत्तराखंड में, आज देखने को नहीं मिल रहा. उसके जब हम लोगों ने बीज कलेक्ट किए साउथ इंडिया से, तो हमें काफी मिल रहे थे, क्योंकि साउथ इंडिया में ये मिशन काफी साल पुराना हो गया है. उड़ीसा मिशन काफी आगे बढ़ गया है. तो जब हम बीज ढूंढने लगे, लोगों ने बोला साउथ के बीज है. हमने बोला नहीं, हम पहले साउथ के, क्योंकि वेराइटीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है. तो हमने बोला नहीं, हम लोकल बीज ही कहीं ना कहीं से लाएंगे. तो किसी से कॉन्टैक्ट किया, किसी के पास पुराने पड़े होंगे. हमारे जरदारी जी है, वो मैंने एक किताब लिखी है, उसमें भी उनका जिक्र है. तो सर से भी हमने कुछ बीज अरेंज किए, क्योंकि सर जो है अपने थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, तो वो बीज ही बचा रहे हैं. वो ये जो हमारी जो गंगा प्रहरी औरतें हैं, उनको हमने मुट्ठी भर बीज दिया था, उससे उन्होंने 5 किलो बीज बना दिया. वो उन्होंने अभी तक बेचा नहीं हो. अभी हम कह रहे हैं, अभी तुम सिर्फ इतना करो कि बीज को मल्टीप्लाई करो. अभी उस हालत में नहीं पहुंचा है कि उसका कमर्शियलाइज कर पाए, उसको यूज कर पाए. तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा जो बेच के हम, वो जो बीज बांट के जो हम उगा पा रहे हैं, उससे सिर्फ हम उनका संरक्षण की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है. दूसरी बात इन बीजों की ये है, जो मिलेट के बीज होते हैं, अगर आपने इनका छिलका नहीं निकाला, अगर आपने इनको छेड़ा नहीं है, तो आप इनको 20-20, 30-30, 40 साल तक के लिए रख सकते हैं. खराब नहीं होंगे, इनमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा. तो ये जो है अपने आप में जो है सबसे आसान है किसान के लिए. अगर बीज हो गए, तो आप जो बीजों से इतनी कमाई कर सकते हो.
0: बिल्कुल सही। और अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आप हमें बता रहे हैं श्री अन्न के बारे में, श्री अन्न के महत्व के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि श्री अन्न को इस्तेमाल करना लोगों ने लगभग बंद कर दिया था, आज की डिमांड बढ़ रही है, क्या सप्लाई उस तरह से हो पा रही?
1: नहीं, बिल्कुल। डिमांड भी जो है बहुत लिमिटेड लोगों के द्वारा है जिनको इसकी अवेयरनेस है। आम आदमी को आज भी इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो जिनको पता चल गया है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो और जो जितनी डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। अब क्या है, प्रोडक्शन और डिमांड के बीच की जो सप्लाई चेन है ना, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। आज भी किसान जो है इसको नहीं उगाना चाह रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं उगाना चाह रहा है क्योंकि इसमें पैसा नहीं है इस समय। और जो अगर इवन वो उगाता है, हम लोग बोलेंगे कि जैसे गढ़वाल का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो बोलते हैं मैडम हम उगाने को तैयार है, सब कुछ है, हमें मिलेगा क्या? हाँ, जो भी MSP गवर्नमेंट ने जो रखी है, या मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, बहुत है। मतलब 2023 आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है मिलेट एयर सेलिब्रेट किया था हमने, तो अभी तक सब लोगों को वो जानकारियां नहीं है। और जो कुछ अनाज ऐसे हैं इसमें जिनके छिलके होते हैं, उनको उगाने के बाद जो है प्रोसेसिंग इज सो डिफिकल्ट, उस प्रोसेसिंग की अभी सुविधा नहीं है लोगों को। वो उगा तो दें, उसके बाद क्या करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है कि मार्केट तक उसे पहुंचा पाए, और हर चीज में जो है खर्चा ऐड हो रहा है, खर्चा ऐड हो रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे गेहूं हो गया या राइस हो गया, राइस मिल की हर जगह राइस मिल है, आसान है लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत जो उनका सिस्टम जो है वो सप्लाई चेन का सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत एडवांस है। तो इसमें जो है सप्लाई चेन में अभी भी जो है सप्लाई चेन में जो एडवांसमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। जो किसान है उसको इसका फायदा तो पता है, पर उसे ये नहीं मालूम है कि वो इससे कमाई कैसे कर सकते।
0: अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और WII से जुड़े हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप गंगा संरक्षण पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप मिलेट यानी कि जिसे हम सीरियन कहते हैं उस पर भी आपका बड़ा काम है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, खेती बंजर हो रही है, जहां जाओ वहां खेतों को खाली देखो। मिलेट की कितनी संभावनाएं हैं, और अगर संभावनाएं हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दखल की जरूरत है, उस पर आपको जानना चाहूंगा।
1: देखिए, जहां तक पलायन का सवाल है वो तो खैर हमारे हाथ की बात नहीं है, पर फिर भी परिवार रह रहे हैं, खेती है, और बंजर जो भूमि हो रही है, मिलेट जो है बंजर भूमि का ही अनाज है। बाकी आप वहां पे कुछ उगा सके ना उगा सके, मिलेट डेफिनेटली उगा सकते हैं, पर देखने की बात यह कि आप उस मिलेट को उगाने के बाद वहां के किसान को क्या फायदा दे पा रहे हैं। जैसे हमने बताया प्रोजेक्ट में जो है हम लोग बीज भी बांट रहे हैं, लोगों को उगाने के लिए भी कह रहे हैं, और उससे वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। झंगोरे से जैसे कई चीजें बनाना सिखा रहे हैं हम, झंगोरा इटसेल्फ भी अगर आप पैकेट में बेचेंगे तो 140 रुपए किलो या 155 रुपए किलो मिल रहा है, जो अनपॉलिश झंगोरा है जिस तरह का हमारे उत्तराखंड में होता है। मंडवे से कई तरह की चीजें बनाना सिखा रहे हैं, पर अब ये है कि वहां पे लोग झंगोरा उगाने को तो तैयार है, पर उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग करनी है, आज की महिला के पास टाइम नहीं है कि उसको कूटती रहे, और कूटने के बाद जो है उसमें काफी अनाज नष्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन अनाजों के साथ जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो उनको लोकली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी यूनिट्स की आवश्यकता है। पॉलिसी मेकर्स ने जैसे 2023 में बहुत स्कीम्स बनी, ऐसी स्कीम भी बनी जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप है कि सारी फसलें खा जाते हैं, तो कई जगह जो है उन लोगों को इसके बेनिफिट भी दिए गए कि इंश्योर कराई गई, अगर मिलेट उगाएंगे तो क्रॉप इंश्योर की जाएगी तो बेनिफिट मिलेगा, ये सब किया गया। पर ये स्कीम सब तक पहुंची है कि नहीं, ये एक बात है। और अगर आप उनको उगाने के लिए बोल रहे हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम बाउंड है, हम उनको सक्षम बना दे रहे हैं, हम उन्हें सिखा दे रहे हैं कि आप इस चीज से ये आइटम बना सकते हैं। आज की डेट में क्योंकि प्रोजेक्ट है, हम उनका आइटम लेके अपने जलज में भी रख रहे हैं कि चलो उनको एक कमाई मिल जाए, पर सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको और भी मार्केट चाहिए, तो वो सुविधा अभी नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली पॉलिसी मेकर का इंटरवेंशन चाहिए, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनको मार्केट चाहिए, यू नो, ये सब चीजें अभी कहीं ना, जैसे कि आपकी मिलिंग यूनिट्स हैं, अगर मिलिंग यूनिट्स उनके आसपास ही हो जाएं तो वहीं पे उनके ग्रेन्स की सॉर्टिंग हो जाएगी, वहीं उनकी जो है हस्किंग हो जाएगी। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप रेडीमेड एक पैकेट भी बना के दे देंगे तो वो बिकने को तैयार हो जाता है। तो अभी ये कंस्ट्रेन है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात वाइट रेवोल्यूशन की बात करना चाहूँगी दूध को लेके। ये मेरा चंपावत में एक्सपीरियंस है। चंपावत में क्या है, यहाँ पे एक तो चकबंदी नहीं है, ये जो रहने वाला किसान है उसकी ज़मीन इधर भी है उधर भी है, चार यू नो कोस दूर भी है, सब अलग अलग अलग जगह फैली है, मतलब उसके नाम की ज़मीन जो है। अब वो कहाँ कहाँ कहाँ अपना रखवाली करता रहेगा जानवरों से। तो अब लोगों ने वहाँ पे क्या किया, मैंने देखा है वहाँ पे लोगों ने हाथी घास उगाना शुरू कर दिया, चारे की,
0: नेपियर,
1: नेपियर, इसलिए क्योंकि वो ना एनिमल डिस्ट्रॉय करेगा, और उनका गाय छोड़ दो भैंसे छोड़ दो वो वहाँ पे चरेंगी, उसका दूध जो है आसानी से आजकल कंपनीज उनके गेट तक आ रही है दूध जमा करने के लिए, तो कोई क्यों मिलेट उगाएगा। हाँ, जहां तक खाने का सवाल है, खाना खाने का सवाल है, राशन में पीडीएस में उनको सारा अनाज मिल जा रहा है, पैसा उनके हाथ में आ रहा है, वो कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। हमारा एक और चैलेंज ये कि हम सिखा तो रहे हैं लोगों को कि भैया तुम लड्डू बनाओ नमकीने बनाओ, इनसे उनको भी खरीद के बनानी पड़ रही है क्योंकि वो उगा नहीं पा रहे हैं इन चैलेंजेस को लेते हुए। पर जो उगा पा रहे हैं किसान उगा रहे हैं, पर वो इतने बड़े स्केल में नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ऐसा बेनिफिट मिल पाए। तो ये चैलेंजेस हैं, हम कोशिश में लगे हुए हैं।
0: अभी आप एक मैप दिखा रहे थे मेरे को,
1: हाँ,
0: एक नक्शा,
1: हाँ बिल्कुल, हाँ।
0: उसमें आपने बताया कि जो ब्लैक है,
1: हाँ,
0: ये सब मिलेट है,
1: सब मिलेट था,
0: 80% भारत में मिलेट इतना था,
1: इतना था,
0: और कहीं ग्रीन दिख रहा था। क्या मिलेट की अभी भी वो स्थिति है या हम ग्रीन वाले पार्ट में पहुंच गए?
1: मैं अनफॉर्चुनेटली ग्रीन वाले पार्ट में भी नहीं पहुंचे हम, अब इतना मार्जिनल हो गया है कि केवल 9% एरिया में मिलेट उग रहा है। इतना बड़ा जो हम लोग अपने को बोलते हैं कि हम खेती करने वाला देश है, ये हमारा 9% पहुंच गया हमारा, ये ना के बराबर मार्जिनल खेती हो रही है मिलेट की, ज़्यादातर कैश क्रॉप से ये रिप्लेस हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम सब लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो हमने डिक्लाइन देखा है धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखा, कहाँ जहाँ 80% लोग इसको उगाया करते थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे इतना नीचे आ गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत चैलेंजेस आए, उस समय उसकी ज़रूरत थी हमारे, पर वो क्या हुआ कि यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होता गया, वापसी का उसने रास्ता ही नहीं देखा। और उसमें जो है ये जो हमारे श्री अन्न आज हम बोल रहे हैं, मोटे अनाज जो है गरीबों का अनाज बन के रह गए, वही जो मार्जिनल किसान थे वही उगा पा रहे थे जो नहीं खा पाते थे उस समय राइस, फिर आपके पीडीएस में मिलने लगा, ये फ्री मिलने लगा।
0: अभी मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि डिमांड तो है,
1: है,
0: ठीक, सप्लाई नहीं है,
1: सप्लाई नहीं है,
0: और किसान करना नहीं चाहते इसको,
1: किसान करना नहीं चाहते, अभी इतना इंसेंटिव
0: तो
1: नहीं।
0: क्या क्या रीजन है, जैसे कि जो सप्लाई चेन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, यही रीजन रहे मैम?
1: बिल्कुल,
0: उसमें जो इंटरवेंशन आप बता रहे हैं कि हम उसको वैल्यूएट ऐड कर सकते हैं,
1: वैल्यू ऐड करने के बाद भी हमें मार्केट चाहिए उनके लिए, वैल्यू एडिशन आप जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं वो उनको भी तो खरीदना है ना, उनके पास जो खेती है उसमें वो घास उगा के खुश है क्योंकि दूध से उनको पैसा मिल जाएगा, वो भी अगर खरीद के, अगर वो 140 रुपए खरीद के लड्डू बना रहे हैं किसी चीज का, तो क्या कीमत उनको कहाँ बाजार मिल रहा है उसका,
0: बाजार की भी दिक्कत है
1: जिस, क्योंकि चीज महंगी हो रही है
0: जी। तो अभी आपकी किताब में देख रहा था मिलेट्स फॉर लाइफ,
1: हाँ जी,
0: तो क्या भूमिका है उसमें और क्या आपने उसमें बताया है, किस तरह से उपयोगी है वो किताब?
1: मिलेट्स फॉर लाइफ जो है पूरा हमारा जो भी अभी तक प्रोजेक्ट में हमने मिलेट, पहले तो उसमें सब कुछ है मिलेट के बारे में, किस तरह से वो लोगों के लिए, मिलेट्स को पता है आपको, मैं बताऊं, मिलेट्स को हम स्मार्ट क्रॉप बोलते हैं, हाँ सुपर फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे स्मार्ट क्रॉप? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये हम मनुष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये ऐसा है कि एक तीर से दो नहीं कई कई निशाने मार सकते हैं अगर हम मिलेट को उगाएं। तो बेसिकली इस किताब में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया और किस तरह से ये गंगा में फिट बैठती है, गंगा के पर्यावरण, गंगा के जल के संरक्षण में ये फिट बैठती है, उसके बारे में चर्चा कि किस तरह से हमने इसको अपने गंगा के मिशन से जोड़ा है, कि कैसे ये आपके पानी के संरक्षण, पानी के पोल्यूशन, पानी के कंजर्वेशन, जैव विविधता पे एडिशन कर सकती है। उसके अलावा जो उगाने वाला किसान है अगर उसको इक्विप कर दिया जाए, उसको बीज प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको वैल्यू एडिशन सिखाया जाए, उसको हर तरफ का एक सपोर्ट मिल पाए, तो ये उसके लिए एक लाइवलीहुड का भी बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स हैं, पर आप अगर बोलेंगे बहुत बड़े स्केल में, तो अभी हमारी जारी है अभी यात्रा, पर हमने जो सक्सेस स्टोरीज देखी हैं वो सच में दिल को छूने वाली
0: एक स्टोरी जानना चाहेंगे, सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे।
1: एक सक्सेस स्टोरी ये है, मैं दो बताती हूँ बल्कि। एक तो यही है कि 25 साल बाद हमने जब बीज के बदले बीज का ये किया, तो हमारी एक महिला गंगा प्रहरी उत्तरकाशी में, तो मुझे याद है कि ऐसे साड़ी में बांध के ले गए लोग अपने सीड्स, और हम आपस में बात कर रहे थे, हम कहते थे आधे लोग तो ऐसी, हमने इतनी मुश्किल से एक को जमा के कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसी फेंक देंगे इधर उधर, पर जितनी औरतें वो अपनी उस साड़ी के चुन्नी के दुपट्टे में बांध के वो लेके गई, सब ने उगाया। किसी के ने बोला मैडम जानवर ने खा लिया, किसी के ठीक से हुए नहीं, किसी का बादल फटा, कुछ अलग अलग अलग एग्जाम्पल हुए, पर कई लोगों ने एक एक पाव उगाया, आधा आधा किलो उगाया, और मतलब वो हमारे लिए इतना, और अब वो हो गया, ये मैं आपको बात अभी से 2 साल पहले की बता रही हूँ, 3 साल पहले की, तो अब जो है उनके पास इतने इतने बीज हो गए हैं कि हम उनसे बोलते हैं हमें भी थोड़ा दे देना, हम और आगे बांटेंगे। और जो हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट थे आसपास एरिया के, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो फील्ड असिस्टेंट थे, वो उनका एरिया हमारी स्टडी में आता भी नहीं था, वो भी हमसे मांग के लेंगे मैडम हमको देना, हम अपने गांव में करेंगे। और उन लड़कों ने प्रचार किया, ये जो मेरी किताब है इसमें हमने एक मिलिट्री जो है हीरोज, मिलिट्री हीरोज नाम दिया, जिन्होंने मिलिट पे काम किया और प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो उनका जिक्र है इसमें कुछ 7-8 लोगों का, उस लेडी की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका भी है, चंपावत से भी एक लेडी है, उनका जिक्र भी है। और आपने वेस्ट बंगाल, जो ज़्यादातर भात चावल खाने वाले लोग हैं, वहां पर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ एक गंगा प्रहरी है, बच्चा एक छोटा सा 23-24 साल का लड़का है, उसने इतना ज्यादा इस मिशन पे काम किया है, उसने कितने किसानों को कन्वर्ट कर दिया जो वहां की सूखी भूमि है, और वो सूखी भूमि पहले नहीं थी, अब भी है क्योंकि पानी पड़ना कम हो गया, अब कितना पानी चाहिए राइस उगाने के लिए, तो उसने वहां पे 80 महिला किसानों को जोड़ के कई किलो, मतलब उसने पूरा जो है इसी का काम में लगा हुआ है वो। अब वो जो है हम लोग उनको जाके वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, वो इधर उधर से भी सिखवाता रहता है उनसे, तो वो सब कुछ मतलब वो ऑनलाइन भी करने लगा है, तो मतलब इट्स वेरी,
0: जैसे अभी हम अलग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: अभी उत्तराखंड में तो हम मुख्य रूप से मंडवा और झंगोरे को ही जानते हैं, इसके बहुत से प्रकार है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: तो जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ किस खास तरह का मिलेट होता है?
1: देखिए मैं बताती हूँ, अगर हम डिफाइन करें मिलेट को ना, तो मिलेट 2 प्रकार के हैं, वैसे तो वेराइटीज बहुत हैं, 200 से ऊपर ज्यादा वेराइटीज हैं, पर जो अभी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, खाए जा रहे हैं, 2 प्रकार के हैं। एक होता है मेजर मिलेट, एक होता है माइनर मिलेट। मेजर से आपको नाम से पता चलेगा ज्यादा, मेजर मिलेट ऐसे हैं जो ज्यादा एरिया में उगाए जा रहे हैं, जिनका साइज भी बड़ा होता है और इनके बाहर छिलका नहीं होता है, तो इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी आसान होती है। इनकी प्रोसेसिंग आसान है इसीलिए थोड़ा ज्यादा उगाया जा रहे हैं। इसमें आते हैं आपके जवार, बाजरा और मंडुआ, ये मेजर मिलेट है। ज्यादातर इन मिलेट को हम आटे के फॉर्म में खाते हैं, रोटी के फॉर्म में आटा बना के खाया जाता है इनको, और इनकी प्रोसेसिंग में क्योंकि इसकी बाहर का छिलका इतना सख्त नहीं होता है, तो ये जो है लोग उगाना पसंद भी करते हैं, बहुत सबसे ज्यादा फॉडर के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है ये। दूसरा हो गया माइनर मिलेट। माइनर मिलेट जो है उसको मिलेट राइस भी कहा जाता है, वो चावल की तरह खाए जाते हैं, वो जो है उसमें भी आपके 6 प्रकार हैं। तो जो है 6 प्रकार के मिलेट हैं, उसमें एक तो आपका झंगोरा ही हो गया जिसको हम बार्नियार्ड मिलेट कहते हैं, एक कोणी हो गया जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, एक लिटिल मिलेट होता है जो यहाँ नहीं होता है, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है पर उसको यहाँ भी उगाया जा सकता है, और एक हो गया ब्राउन टॉप मिलेट, ये भी ज़्यादातर साउथ इंडिया में उगता है, एक हो गया कोडो मिलेट जो कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नंबर वन है। कोडो मिलेट के तो बीज खत्म हो गए थे दुनिया से, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीज आज सारी दुनिया में घूम रहे, छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल से बीज लिए गए थे ये, तो ये। और एक प्रोसो मिलेट, चेना भी हमारे उत्तराखंड में उगाया जाता है, वो भी विलुप्त हो गया, नहीं मिलता है बहुत किसी, मेरी नानी के पास थे बीज, वो बेचारी को मरे हुए आज 25 साल हो गए, उनके जब कमरा साफ किया गया तो एक थोड़े से बीज उनके कमरे में मिले, हाँ तो मतलब कि उन्होंने रखे थे ये सोच के कभी उगाया जाएगा, उस बेचारे ने कभी, उन बीजों ने कभी खेती नहीं देखी। तो मेजर मिलेट और माइनर मिलेट, ये जो माइनर मिलेट है ना ये दवा है। मेजर मैं अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये दवा का काम करते हैं श्री अन्न।
0: जैसे अभी आपने हेल्थ पर भी बात कर रहे हैं, औषधि पर भी हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम पर हम बात करना चाहेंगे, तो जो इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम गंगा उसी का पार्ट है।
1: हाँ जी बिल्कुल हाँ।
0: और जैव विविधता भी पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो जो मिलेट है वो इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कितना योगदान है मैम, क्योंकि आप उस पर लगातार काम कर रहे हैं।
1: हाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हमारे लिए और हमारे संदर्भ में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो मिलेट जो है, जैसे मैंने बोला, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है, कम से कम जो है इनको सुविधा चाहिए उगने के लिए। पानी, जैसे मैंने बोला, इनको 10% कम लगता है। आप 10 जितना पानी एक साल आप धान में लगाएंगे, वो 20 साल तक ये उगते रहेंगे। इनमें आप कोई किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालते। जो इनकी जड़ें हैं ना, जड़ें सिस्टम इतना, रूट सिस्टम इतना डीप होता है इनका, कि ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, मतलब बहुत जो इन, और इनकी जड़ों में जो है किसी तरह के फंगस पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो वहाँ की सॉइल की उसको न्यूट्रिशन को बहुत रिच करते हैं और जैव विविधता बढ़ाती है वहाँ के। और दूसरा चीज़ इनका ये है कि जहाँ पे ये उगते हैं, आपकी चिड़ियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि जो ये होती है ना सीड ईटिंग बर्ड्स, उनकी विविधता बहुत दिखेंगी आपको। मतलब लोग इससे ना घबराएं कि भाई वो चिड़िया आएंगे तो दाना खा जाएंगी, नहीं, वो चिड़िया उनका चौकीदार भी है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब आपने एक ही एरिया में हुआ है, सारी चिड़िया आके खा के चलेगी, क्योंकि चिड़िया को भी मिल गया उसका फेवरेट खाना, यू नो। पर जब आप पूरे में उगाएंगे, कितना खा जाएगी चिड़िया, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे वहाँ पे आपके, और जो चिड़ियाओं की ड्रॉपिंग्स होती हैं, उससे वहाँ की सॉइल और भी रिच होती है, उस नाइट्रेट जो वो ड्रॉप करते हैं, तो उससे वहाँ की, तो वहाँ की जैव विविधता मिट्टी में भी बढ़ी, बाहर भी बढ़ी। और ये जो है, इनको एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है, C4, ये घास होते हैं ये जो, इनको C4 ग्रासेस बोला जाता है। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगी C4 ग्रासेस क्या होते हैं। C4 ग्रासेस एक तरह का कार्बन सीक्वेंसिंग है, जिससे कि पौधा जमीन से किस तरह से पानी लेता है और वो हवा में किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो पृथ्वी है ना, उसमें भगवान ने, नेचर ने ऐसा बैलेंस किया कि C4 क्रॉप्स दी हैं। क्यों? ये भी एक C4 क्रॉप्स है, क्योंकि C4 क्रॉप क्या करती है, कम इस तरह से पानी लेती है कि पानी वेस्ट ना हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कम छोड़ती है हवा में। तो जहाँ ये C4 ग्रासेस होती है, वहाँ पे हवा भी शुद्ध होती है। तो इस तरह का आप सोचिए कि पर्यावरण से इस तरह से ये लिंक है,
0: इसका नाता है।
1: हाँ, तो
0: बहुत बढ़िया लग रहा है मैम आपसे बात करते हुए, और मिलेट के बारे में तो काफ़ी जानकारियाँ आपके पास हैं, और मुझे लगता है कि मैंने तो उसमें से मुश्किल से 2% जानकारी आपसे ले पाया हूँ।
1: और
0: अभी हम जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, कितनी और जरूरत है, क्योंकि जो आपने मुझे मैप दिखाया है, मेरा ध्यान उसी पर ही टिका हुआ है कि एक समय में अपने देश में इतना मिलेट था, आज जो आप बता रहे हैं कि उसका जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, उसका भी 10% भी नहीं रह गया है, 9% आप बता रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ।
0: पूरी एग्रीकल्चर का 9%,
1: हाँ, जो तो कल्टीवेशन एरिया का।
0: कितनी जागरूकता की जरूरत है, और जागरूकता के लिए, क्योंकि आप मिलेट फिर लगातार काम कर रहे हैं, 10 साल से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ ही आप काम कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: तो अभी कितनी जरूरत और महसूस करते हैं।
1: बहुत बहुत। आप देखिए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के आसपास आया था, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, उस रेवोल्यूशन का हम असर अब देख रहे हैं। तो कोई चीज इतना इंटेंसिव, इतना प्रोएक्टिवली करना है ना, ये सबको करना है। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ, अब तो सबको पता ही होगा मिलेट के बारे में, पर फिर भी मैं जब कभी किसी अनजान से मिलती हूँ, उसको पता ही नहीं होता मिलेट क्या, उसे पता ही नहीं है कि मिलेट कौन सा अनाज को हम मिलेट बोल रहे हैं। मैं मतलब कि मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ जो है लोगों के पूरे अंदर तक घुस जाए कि मिलेट सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये जो है एक, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम का तंत्र है ना, उसमें कृषि विविधता, जैव विविधता, हमारे पारंपरिक और ट्रेडिशन संस्कृति का एक बैलेंस है, यू नो, बाकी चीजें जो भी हो बाद में आई गई हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि बहुत इंटेंसिवली प्रोएक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक इकोनॉमिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई नहीं करेगा। अभी कुछ दिन मुझे लोग कह रहे थे कि भैया लोगों ने गढ़वाल में कीवी उगाना शुरू कर दिया, और मुझे इतनी तकलीफ हुई इस बात से। उस किसान को पैसा बहुत मिल रहा होगा कीवी उगाने से, मैं कह रही क्यों किया उसने, मतलब कि मिलेट क्यों नहीं उगा पाया। तो कहीं ना कहीं वही सप्लाई चेन में कमी है, तो उसको नहीं फायदा लग रहा है उसको उगाने में। तो बहुत लंबा सफर है, पर उम्मीद है अभी भी,
0: उम्मीद अभी बनी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे मिलेट पर, तो मिलेट का जो हेल्थ एस्पेक्ट, उस आयाम पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी तो हम पर्यावरण पर काम कर पाएंगे, अपनी इस धरती के लिए काम कर पाएंगे। तो जो स्वास्थ्य के नजरिए से हम मिलेट को कह पाते हैं।
1: किसी ने ना एक यूएन में जो हेड थे उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, किससे भी रिलेटेड है, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा कि उसको करने वाला इंसान जब तक हेल्दी ना हो, कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। और ये क्रॉप जो है ये ना किसान और हमारी खेती और हमारी सेहत का इंश्योरेंस है। कैसे है ये इंश्योरेंस हमारी खेती का, हमारी सेहत का? जो डॉक्टर खादर वली है ना, डॉक्टर खादर वली का जो उनको मिलेट, उनको 2023 में पद्मश्री दी गई थी और उनको जो है फादर ऑफ मिलेट कहा गया, सिर्फ इसलिए वो पिछले, आप कह रहे हैं ना कितना समय लगेगा, वो पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं तब यहाँ पहुंचे हैं। तो उनका, उन्होंने ना 120 प्रोटोकॉल बनाए हैं। आप मतलब उस प्रोटोकॉल को, वो उनकी वेबसाइट में है, उस प्रोटोकॉल को आप पढ़ेंगे तो सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, कैंसर तक का इलाज है इसमें। और वो कहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जो माइनर मिलेट है हमारा, प्रोसो को छोड़ के जो 5 माइनर मिलेट हैं, वो कहते हैं वो एक्चुअल श्रीधन है, उसको हीलिंग मिलेट कहा जाता है। हीलिंग मिलेट मीन्स वो आपकी कोई भी बीमारी ठीक कर देंगे, चाहे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर ब्लड प्रेशर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका थायराइड ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो अनाज है वो आप इस तरह से उनकी बनावट है, उनमें इतना ज्यादा रेशा जिसको फाइबर कहा जाता है वो है। और रेशा ऐसा नहीं है कि बाहरी बाहर हो, अंदर तक बुना हुआ है वो रेशा। जब आप वो अनाज खाते हैं ना, तो आपने गट माइक्रोबायोम के बारे में सुना होगा, जो हमारी आंतों की माइक्रोबायोम होती है, हमारी माइक्रोबायोम कहते हैं कि अगर वो डिसबैलेंस हो जाए सारी बीमारियां आपको होंगी। डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो छोड़िए, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो गट, अल्जाइमर है तो गट जिम्मेदार है, हर चीज का गट जिम्मेदार है। तो इन अनाजों को, हीलिंग अनाज जो आपको ठीक करते हैं वो कहा गया है। ये जो खासकर ये 5 अनाज है, इसका जो फाइबर है वो गट माइक्रोबायोम को फीड करता है, इसमें ऐसा फाइबर है। और वो फाइबर जो है, जब आपके गट माइक्रोम में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के आप मिलेट खाएंगे, अलग अलग तरह के आपके अंदर रेशा जाएगा, तो आपका गट माइक्रोबायोम बहुत रिच होगा। और जब गट माइक्रोबायोम रिच होगा आपका, तो आप उतने ही हेल्दी होंगे, आपकी अलग अलग बीमारियां एड्रेस होंगी। तो इसको जो है हीलिंग मिलेट कहा गया, ये सेहत के लिए इतनी अच्छी है।
0: बहुत अच्छी जानकारी मैम आपसे मिली है। और अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप इस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं, 10 साल आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो गए। मैम चलते चलते आपका एक संदेश जानना चाहेंगे मिलेट को लेकर युवाओं के लिए।
1: युवाओं के लिए मेरा संदेश, जैसे मैंने ये कहा कि आप चाहें ना चाहें इसे तो अपनाना ही पड़ेगा, मतलब नेचर ने वो कंडीशन क्रिएट कर दी है कि ये हमें अपनाना ही पड़ेगा। और ये ही हमारा भविष्य है, ये अनाज है हमारा भविष्य, ये अनाज इसलिए हमारा भविष्य, हमारे किसान का भविष्य है, ये हमारी सेहत का इंश्योरेंस है, तो इसको तो अपनाना ही पड़ेगा, देर सवेर ही अपनाना ही पड़ेगा।
0: मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपने अभी हमें मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, आपने उसके इतिहास के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि आज हम किस स्थिति में है, जागरूकता का क्या स्तर है, और लोग मिलेट के प्रति जो श्री अन्न है उसके प्रति कितने जागरूक हुए हैं, उसके बारे में भी आपने बताया। और आपने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से हम हस्तक्षेप करें, हम उसमें दखल करें कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, और इसका जो डिमांड और जो सप्लाई का रेशियो है वो कहाँ गड़बड़ाया हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों का क्या समाधान है। जैसा कि आपने वैल्यू एडिशन के बारे में बताया, आपने मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और आपने एक खास बात ये बताई कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उससे मिलेट कहाँ जुड़ा हुआ है, किस तरह से लोगों को एम्पावर करता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए, रेडियो कदार को आपका मूल्य समय दिया है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत।

क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।

0: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान और यहां हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से। आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका स्वागत है रेडियो केदार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, जैसा कि अभी हम बात करेंगे मिलेट पर, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं। श्री अन्न का इन दिनों बहुत प्रचार भी हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं श्री अन्न पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़ने का जो यात्रा है, जो सफ़र है, उस पर आपसे जानना चाहूँगा।
1: मैं जो हूँ भारतीय वन्यजीव संस्थान से अभी नहीं जुड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है। मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, और कई प्रोजेक्ट्स किए मैंने इसमें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए इकोलॉजी से रिलेटेड। हम लोगों का बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट होता है, इकोसिस्टम का आस्पेक्ट होता है, जिसमें हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो, और लोगों से बहुत हमारा जुड़े हुए रहते हैं हम लोग, क्योंकि हर जंगल के इर्द गिर्द लोग ही हैं, तो हमारा लोगों से भी बहुत संबंध है। तो ये जर्नी धीरे धीरे धीरे धीरे मिलेट तक, मेरे कुछ इसमें पर्सनल रीजंस भी थे इसमें आने के, कुछ हेल्थ इश्यूज थे घर में जिसकी वजह से मैंने खुद इसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बेनिफिट मिला, फिर मैं इसी में घुस गई, इसी में ट्रेनिंग करने लगी, इसी की जानकारी मैं हासिल करने लगी। और जब मैं इसके बारे में और जानने लगी तब मुझे पता चला कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना यूज़फुल है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये हमारी कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी एग्रो बायोडायवर्सिटी में। आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए, अब आप ये जो वन्य जीव और जंगली जीवों की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से ये एक फसल उनके भले के साथ भी जुड़ी हुई है।
0: सवाल ये है कि मैं, आप भारतीय वन्य जीव संस्थान में आपने मास्टर इन वाइल्ड लाइफ साइंस, उसके बाद सीधा मिलेट, जो ये जो क्रम है इसको जानना चाहूंगा।
1: मैं सीधा मिलेट में नहीं आई हूँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान से बहुत सालों से जुड़ी हूँ, मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट लिए, कुछ प्रोजेक्ट मेरे कैप्टिव एनिमल्स से रिलेटेड थे, कुछ प्रोजेक्ट मेरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे, जो जंगल के आसपास वाले लोग रहते हैं किस तरह से जंगली जानवरों से वो जूझ रहे हैं, या जंगली जानवर उनकी वजह से किस तरह से जूझ रहे हैं, तो इस तरह का वो था। फिर उसमें मिलेट कैसे आया कि ये मेरा पर्सनल था, जब मैं ये सब कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरी बिटिया की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि उसको, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, तो मुझे एक बार याद है, वो अभी दसवीं आठवीं क्लास में थी शायद, रात को हमें 12 बजे फ़ोन आया कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में, और वो बैंगलोर के पास पढ़ रही थी, तो हम अगले दिन पहली फ्लाइट पकड़ के गए और जो है उस लड़की को 15 दिन की छुट्टी में लेके आ गए। तो वहाँ पता चला कि उसको बहुत भयानक एलर्जी हो रही थी, मतलब जब मैंने उसको वहाँ पे देखा, उसको ऑक्सीजन लगा के रखा है, लगा मैं बस ये सोच रही थी कि अगली सांस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, मैं इतनी डरी हुई थी उस समय उसकी वो हालत देख के। तो फिर जब मैं वहाँ अस्पताल से निकली तो मुझे याद है इतना बड़ा पॉलीथीन बैग डॉक्टर्स ने मुझे थमा दिया और बोला कि बिल्कुल ये नॉर्मल बच्ची है, कुछ नहीं है, बस इसको 8 बार ये पफ लेना पड़ेगा स्टेरॉयड के पफ, उसके बाद शी इज़ नॉर्मल, वो कुछ भी खेलेगी कूदेगी जो भी है, बिल्कुल खुशी के साथ ये वो सब करेगी। अब इस चीज़ ने जो है, मैंने उसी समय सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ और ये दवाइयों के सहारे नहीं रहेगी, अभी मेरी बच्ची जो है 15 साल की भी नहीं है। जो मैं घर में लेके आई उसे, 15 दिन की मैं छुट्टी में लेके आई, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कुछ नेचुरोपैथ से कांटेक्ट किया, उसको मैंने जिस डाइट में रखा उसमें अनाज की जगह मैंने मिलेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उन 15 दिनों में, छठवें दिन में मेरी लड़की के इनहेलर्स ख़त्म हो गए, सब कुछ, मतलब शी वॉज नॉर्मल, मतलब जो ये मेरा अपना, उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे इसके बारे में और जानना है, ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। फिर उसके बारे में, फिर मैं वैसे एक हेल्थ कोच भी हूँ, मैंने वो कोर्सेज बाद में किए, इसके साथ साथ किए मैंने ये कोर्सेज, पर जब मैं इसके बारे में पढ़ने लगी, जानने लगी, मैंने दुनिया भर की ट्रेनिंग्स करी, तब मुझे समझ आया कि ये ना केवल हमारे सेहत के लिए इतने अच्छे हैं, पर हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। ये बात मुझे बाद में समझ आई और हम इस बारे में डेफिनेटली डिटेल में चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल मैम, एक इंसिडेंट ने आपकी दिशा बदल दी। आज आप मिलेट्स की तरफ बढ़ गए हैं और आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल की है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं। गंगा जो संरक्षण की हम बात करते हैं, गंगा में पलने वाले जलीय जीवों के प्रति संवेदनशील होने के लिए जो हम बात करते हैं, उस प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो गंगा संरक्षण है उसमें मिलेट कहाँ है और मिलेट का रोल क्या है।
1: पहले मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी हमारे डीन को, डॉक्टर रुचि बडोला। ये बात 2019 की है जब कोविड स्टार्ट हुआ था और तब मैं इस प्रोजेक्ट से अंदर आके नहीं जुड़ी थी, तो उस समय हम लोगों का एक्सेस नहीं था कि हम गंगा प्रहरी से बात कर पाए, मतलब गंगा प्रहरी को बुला पाए किसी ट्रेनिंग के लिए या कुछ कर पाए। उस समय मैम ने मुझे इन्वॉल्व किया इस प्रोजेक्ट में, एज अ रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व किया, उस समय एज अ कंसल्टेंट इन्वॉल्व किया, और हमने 2019 से इतनी वर्कशॉप्स करी, अवेयरनेस की इतनी वर्कशॉप्स करी, मतलब कुकरी की क्लासेस करी ऑनलाइन लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि लोग उस समय बीमार चल रहे थे कि किस तरह से ये आपकी मदद कर सकते हैं आपकी हेल्थ के प्रति। और अब जब आप गंगा के उसकी बात कर रहे हैं, मैं अगर पर्यावरण को लेके बात करूं, आपको मालूम है जो मिलेट है ये जो है श्री अन्न तो इनको बोला ही जाता है, हाँ ये वो सबसे प्राचीन हमारे अनाज है, जो कि पहला जब कृषि का डोमेस्टिकेशन हुआ था ना इन अनाजों से हुआ था। तो ये वो कहते हैं ये वो सोना है जो तप के निकला है, धरती ने इतने उबड़ खाबड़ इतने प्रलय देखे पर ये नहीं हिला, इसने फिर भी लोगों का पेट पाला है 5,000-10,000 साल पहलों से। तो ये वो सोना है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे कैसे हमारी गंगा के साथ ये जुड़ सकता है, आपको मालूम है जो हम ये मिलेट है इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप कहा जाता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का मतलब ये है जो क्रॉप किसी भी स्ट्रेस में उग सकती है। आपने देखा कितनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में हमारी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, बट मिलेट एक ऐसी है जो तेज से तेज गर्मी सह सकती है, उसके बाद भी उगेगी और आपका पेट पालेगी। दूसरी बात, इस पौधे को उगाने में, इस घास को उगाने में आपको बहुत कम पानी चाहिए। गंगा हमारी देखिए किस तरह से कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर का जो वाटर टेबल है कितना नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि इतना इरिगेशन के लिए इतना पानी चाहिए हम लोगों को। ये फसल जो है ना 10% लेस पानी लेती है। डॉक्टर खादर वली, ये पता नहीं कितने लोग उन्होंने उनका नाम सुना होगा, फादर ऑफ मिलेट कहा जाता है उनको, उनका कहना ये है कि जितना पानी हम एक साल अपने धान में लगाते हैं उससे आप 20 साल तक मिलेट उगा के लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये पानी के कंजर्वेशन में काम आता है। दूसरा, इसको किसी तरह की पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है गंगा कितनी पोल्यूटेड हो रही है, कितना पेस्टिसाइड क्विंटलों में उसमें जा रहा है खेती का जी। हमारा वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना पोल्यूटेड हो रहा है। ये क्रॉप्स कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, सिर्फ ये चाहती हैं हमें उगा दिया जाए। ये इतनी स्टर्डी होती हैं, इनको किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली नेचुरल है। तो अगर हमें कोई चीज़, हम ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस करें जो हमारा पानी बचा रही है, कोई क्रॉप ऐसी इंट्रोड्यूस करें जो हमारा हमें जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो गंगा के संरक्षण में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि गंगा के जो संरक्षण है उसमें इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने अभी इसकी खासियत भी बताई।
1: लेकिन और भी हैं एन नंबर्स आगे, और आप अभी बताना चाहते, सुनना चाहते तो मैं अभी बता दूं।
0: बिल्कुल मैम, और धीरे धीरे आपसे बातचीत होती रहेगी तो लगातार इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैम मैं जानना चाहूंगा कि जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े हैं, आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच गए, कम्युनिटी से मिले,
1: कम्युनिटी से
0: 11 राज्यों में, बेसिन एरिया में 5 राज्य है जो गंगा जहाँ से होकर गुजरते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: लोगों के पास पहले से एक अलग क्रॉप है जिसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और क्योंकि उनको लगता है कि भाई गन्ना उगाएंगे तो गन्ना सीधा जाएगा और सीधा पैसा मिल जाएगा।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो क्या चैलेंजेस आए, क्या लोगों को जब आपने समझाया इसके बारे में तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे, किस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी?
1: बहुत चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि जैसे आपका कहना है कि पूरे बेसिन में हम जा रहे हैं, उत्तराखंड में तो कम से कम कुछ लोग जानते हैं, अभी भी उगा रहे हैं इसको, और बाकी एरियाज में लोगों ने तो देखा भी नहीं है इसको, इसके बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं है और उनके पास कोई रीज़न नहीं है इनको उगाने का। तो हम लोगों के लिए वो स्ट्रगल तो था ही, पर यही है हमने वर्कशॉप के दौरान बहुत सारी हमने उन लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात है जैसे हमारा एक कार्यक्रम आपने जलज का भी सुना होगा कंपोनेंट है, उसमें लाइवलीहुड का कंपोनेंट है, तो उसमें हमने क्या किया कि महिलाओं को जोड़ा उससे, और महिलाओं को हमने बहुत अवेयरनेस की क्लासेस दी किस तरह से से वो सेहत के लिए अच्छे हैं। जो एक महिला होती है ना घर की, उसका हमेशा फोकस घर होता है, फैमिली का एक हेल्थ, फैमिली का स्वास्थ्य होता है। तो जब आप उनको जोड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट जागता है। आज महिला के हाथ में खेती नहीं हो, बाजार के हाथ चली गई, हस्बैंड्स के हाथ में चली गई। मतलब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम यूपी में क्लासेस ले रहे थे, तो जब मैं यूपी में उनको सिखा रही थी, यूपी में लोग ज्यादातर बाजरा और ज्वार उगाते हैं, वो भी खाने तक नहीं जाता है, उसको वो आधे जब वो थोड़ा कच्चा होता है उसमें काट दिया जाता है, गाय भैंस को खिलाया जाता है कि उससे दूध की मात्रा बढ़ती है। दूध के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उनको ये सिखा रही थी कि तुम सोचो जानवर का दूध बढ़ रहा है, तो तुम्हारे घर में जो औरतें बच्चा जिनका होने वाला है या जो अपने बच्चों को पिला रही है, उनके लिए कितना अच्छा होगा ये। तो हमने बहुत सारी मतलब उनको सेहत से रिलेटेड कई चीजें, उनको शायद पर्यावरण वाली बात में इतना मजा नहीं आया, पर जो फैमिली की हेल्थ वाली बात थी वो उनको सच में छू गई। तो एक औरत ने बोला, मैडम आपके कहने पर मैंने अपने हस्बैंड से इस बार बोला कि भाई कम से कम जो है आधा क्विंटल बाजरा बचाना, मैं रोटी खिलाऊंगी बच्चों को, घर में बना के रोटी खिलाऊंगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला, तुम भी डंगर हो गए हो क्या? तो मतलब कहने का मतलब ये कि उसका कहने का मतलब ये कि मैं चाहती हूँ वो चेंज, पर मुझे शायद अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शायद उसे बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा या डंगरों को खिला के जो दूध बेच के उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो और एक तो ये तरीका, और दूसरा हम इनको वैल्यू एडेड आइटम सिखाते हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे उससे आप क्या बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, नमकीनें बना सकते हैं। तो उनको, लेडीज को भी ये लगता है कि हम कुछ करके बना के जो है ये बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में है डिमांड। एक नीश, एक जो अवेयर लोग हैं वो चाहते हैं इसके बने हुए आइटम्स खाना, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उनको एक कमाई का जरिया मिला। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों ने जो हम ये कर रहे थे ना, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे, तो उस समय मैंने एक छोटे से एक सेइंग बनाई। तो उस समय मैंने ये बोला कि जो ये कहती थी कि मोटे अनाज का ये किस्सा होगा, नारी तेरी साड़ी में खिस्सा होगा। मतलब वो बात से उनको इतनी वो लगी, कहती मैडम हमको भी पॉकेट चाहिए अपनी साड़ी में, क्योंकि हम इसके द्वारा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट एक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक वो रीजन है। कभी भी औरत के किसी भी कपड़े में पॉकेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होती थी, ये पावर भी आदमी को दिया गया था। तो इसलिए जब ये बात हुई, वो इतनी खुश हुई, कह रही मैडम हमें भी अपनी साड़ी में एक हिस्सा चाहिए। अब वो अलग बात है, आजकल साड़ियां आ रही है मोबाइल रखने के लिए, बट मतलब कि दिस वाज, इस तरह का हमने अवेयरनेस किया, और औरतें जो हमारे साथ बहुत जुड़ी। उत्तराखंड में हम लोगों ने बीज के बदले बीज का एक आंदोलन हमने हर जगह चलाया। वो उत्तराखंड में 25 साल बाद फॉक्सटेल मिलेट उगाया गया, जो हमारे जो गंगा प्रहरी महिला है उसने अपने खेत में एक मतलब 25 कह रही मैडम 25 कह रही मेरी बूढ़ी नानी दादी कहती थी ये हम लोग खाया करते थे, कि यदि मैम यहाँ किसी ने वो बीज नहीं देखा था, हमने इतनी मुश्किल से वो बीज जमा, मतलब ये सबसे बड़ा स्ट्रगल बीज का है, तो हमने वो बीज प्रोक्योर करके बांटा। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश में ये सेम चीज करी।
0: बीज की आप बात कर रहे हैं, तो बीजों के संरक्षण पर भी एक बड़ा मूवमेंट उत्तराखंड में चला है। तो जो बीज का जो संरक्षण है उसको कैसे करते, क्योंकि गंगा का कंजर्वेशन तो अलग है, बीजों का सीड कंजर्वेशन भी है। तो सीड कंजर्वेशन पे मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे संरक्षित रखते हैं बीजों को।
1: टेक्निकली मतलब कि इसके बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि उसको रखने के तो अलग अलग तरीके हैं, और सबको पता है, महिलाएं किसान सबको पता है, पर बीज होने भी तो चाहिए, विलुप्त हो गए, प्रॉब्लम है विलुप्त हो गए। तो मैं जैसे ही आपको बोल रही हूँ, कोणी बोलते हैं जैसे फॉक्सटेल मिलेट को, कोणी बोला जाता है। कोणी रोज के चावल की तरह खाया जाता था उत्तराखंड में, आज देखने को नहीं मिल रहा। उसके जब हम लोगों ने बीज कलेक्ट किए साउथ इंडिया से, तो हमें काफ़ी मिल रहे थे, क्योंकि साउथ इंडिया में ये मिशन काफ़ी साल पुराना हो गया है, उड़ीसा मिशन काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो जब हम बीज ढूंढने लगे, लोगों ने बोला साउथ के बीज है, हमने बोला नहीं, हम पहले साउथ के, क्योंकि वेराइटीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो हमने बोला नहीं, हम लोकल बीज ही कहीं ना कहीं से लाएंगे। तो किसी से कॉन्टैक्ट किया, किसी के पास पुराने पड़े होंगे, हमारे जरदारी जी है, वो मैंने एक किताब लिखी है उसमें भी उनका जिक्र है। तो सर से भी हमने कुछ बीज अरेंज किए, क्योंकि सर जो है अपने थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते, तो वो बीज ही बचा रहे हैं। वो ये जो हमारी जो गंगा प्रहरी औरतें हैं, उनको हमने मुट्ठी भर बीज दिया था, उससे उन्होंने 5 किलो बीज बना दिया, वो उन्होंने अभी तक बेचा नहीं हो। अभी हम कह रहे हैं अभी तुम सिर्फ इतना करो कि बीज को मल्टीप्लाई करो, अभी उस हालत में नहीं पहुंचा है कि उसका कमर्शियलाइज कर पाए, उसको यूज कर पाए। तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा जो बेच के हम वो जो बीज बांट के जो हम उगा पा रहे हैं, उससे सिर्फ हम उनका संरक्षण की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। दूसरी बात इन बीजों की ये है, जो मिलेट के बीज होते हैं, अगर आपने इनका छिलका नहीं निकाला, अगर आपने इनको छेड़ा नहीं है, तो आप इनको 20-20, 30-30, 40 साल तक के लिए रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे, इनमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो ये जो है अपने आप में जो है सबसे आसान है किसान के लिए, अगर बीज हो गए तो तो आप जो बीजों से इतनी कमाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आप हमें बता रहे हैं श्री अन्न के बारे में, श्री अन्न के महत्व के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि श्री अन्न को इस्तेमाल करना लोगों ने लगभग बंद कर दिया था, आज की डिमांड बढ़ रही है, क्या सप्लाई उस तरह से हो पा रही?
1: नहीं, बिल्कुल डिमांड भी जो है बहुत लिमिटेड लोगों के द्वारा है, जिनको इसके अवेयरनेस है। आम आदमी को आज भी इसके अवेयरनेस नहीं है। तो जिनको पता चल गया है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो और जो जितनी डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। अब क्या है, प्रोडक्शन और डिमांड के बीच की जो सप्लाई चेन है ना, उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं है, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। आज भी किसान जो है इसको नहीं उगाना चाह रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं उगाना चाह रहा है क्योंकि इसमें पैसा नहीं है इस समय। और जो अगर इवन वो उगाता है, हम लोग बोलेंगे कि जैसे गढ़वाल का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो बोलते हैं मैडम हम उगाने को तैयार है, सब कुछ है, हमें मिलेगा क्या? हाँ, जो भी MSP गवर्नमेंट ने जो रखी है, या मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, बहुत है। मतलब 2023 आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया था हमने, तो अभी तक सब लोगों को वो जानकारियां नहीं है। और जो कुछ अनाज ऐसे हैं इसमें जिनके छिलके होते हैं, उनको उगाने के बाद जो है प्रोसेसिंग इज सो डिफिकल्ट, उस प्रोसेसिंग की अभी सुविधा नहीं है लोगों को। वो उगा तो दें, उसके बाद क्या करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है कि मार्केट तक उसे पहुंचा पाए, और हर चीज में जो है खर्चा ऐड हो रहा है, खर्चा ऐड हो रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे गेहूं हो गया या राइस हो गया, राइस मिल की हर जगह राइस मिल है, आसान है लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत जो उनका सिस्टम जो है, वो सप्लाई चेन का सिस्टम है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत एडवांस है। तो इसमें जो है सप्लाई चेन में अभी भी जो है सप्लाई चेन में जो एडवांसमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। जो किसान है उसको इसका फायदा तो पता है, पर उसे ये नहीं मालूम है कि वो इससे कमाई कैसे कर सकते।
0: अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और WII से जुड़े हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप गंगा संरक्षण पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप मिलेट यानी कि जिसे हम श्रीअन्न कहते हैं, उस पर भी आपका बड़ा काम है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, खेती बंजर हो रही है, जहाँ जाओ वहाँ खेतों को खाली देखो। मिलेट की कितनी संभावनाएं हैं, और अगर संभावनाएं हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दखल की जरूरत है, उस पर आपको जानना चाहूँगा।
1: देखिए, जहाँ तक पलायन का सवाल है वो तो खैर हमारे हाथ की बात नहीं है, पर फिर भी परिवार रह रहे हैं, खेती है, और बंजर जो भूमि हो रही है, मिलेट जो है बंजर भूमि का ही अनाज है। बाकी आप वहाँ पे कुछ उगा सके ना उगा सके, मिलेट डेफिनेटली उगा सकते हैं, पर देखने की बात ये कि आप उस मिलेट को उगाने के बाद वहाँ के किसान को क्या फ़ायदा दे पा रहे हैं। जैसे हमने बताया प्रोजेक्ट में जो है हम लोग बीज भी बांट रहे हैं, लोगों को उगाने के लिए भी कह रहे हैं, और उससे वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। झंगोरे से जैसे कई चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं हम, झंगोरा इटसेल्फ भी अगर आप पैकेट में बेचेंगे तो 140 रुपए किलो या 155 रुपए किलो मिल रहा है, जो अनपॉलिश झंगोरा है, जिस तरह का हमारे उत्तराखंड में होता है। मंडवे से कई तरह की चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, पर अब ये है कि वहाँ पे लोग झंगोरा उगाने को तो तैयार हैं, पर उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग करनी है, आज की महिला के पास टाइम नहीं है कि उसको कूटती रहे, और कूटने के बाद जो है उसमें काफ़ी अनाज नष्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन अनाजों के साथ जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो उनको लोकली अवेलेबल नहीं है
0: जी।
1: तो ऐसी यूनिट्स की आवश्यकता है। पॉलिसी मेकर्स ने जैसे 2023 में बहुत स्कीम्स बनी, ऐसी स्कीम भी बनी जैसे उत्तराखंड में आपने देखा कि जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप है कि सारी फसलें खा जाते हैं, तो कई जगह जो है उन लोगों को इसके बेनिफिट भी दिए गए कि इंश्योर कराई गई, अगर मिलेट उगाएंगे तो क्रॉप इंश्योर की जाएगी तो बेनिफिट मिलेगा, ये सब किया गया। पर ये स्कीम सब तक पहुंची है कि नहीं, ये एक बात है। और अगर आप उनको उगाने के लिए बोल रहे हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम बाउंड है, हम उनको सक्षम बना दे रहे हैं, हम उन्हें सिखा दे रहे हैं कि आप इस चीज़ से ये आइटम बना सकते हैं। आज की डेट में क्योंकि प्रोजेक्ट है, हम उनका आइटम ले के अपने जलज में भी रख रहे हैं कि चलो उनको एक कमाई मिल जाए, पर सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको और भी मार्केट चाहिए, तो वो सुविधा अभी नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली पॉलिसी मेकर का इंटरवेंशन चाहिए, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनको मार्केट चाहिए, यू नो, ये सब चीज़ें अभी कहीं ना, जैसे कि आपकी मिलिंग यूनिट्स हैं, अगर मिलिंग यूनिट्स उनके आसपास ही हो जाएं तो वहीं पे उनके ग्रेन्स की सॉर्टिंग हो जाएगी, वहीं उनकी जो है हस्किंग हो जाएगी। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप रेडीमेड एक पैकेट भी बना के दे देंगे तो वो बिकने को तैयार हो जाता है। तो अभी ये कंस्ट्रेन है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात वाइट रेवोल्यूशन की बात करना चाहूँगी, दूध को लेके। ये मेरा चंपावत में एक्सपीरियंस है। चंपावत में क्या है, यहाँ पे एक तो चकबंदी नहीं है, ये जो रहने वाला किसान है उसकी जमीन इधर भी है उधर भी है, चार यू नो कोस दूर भी है, सब अलग अलग अलग जगह फैली है, मतलब उसके नाम की जमीन जो है। अब वो कहाँ कहाँ कहाँ अपना रखवाली करता रहेगा जानवरों से। तो अब लोगों ने वहां पे क्या किया, मैंने देखा है वहां पे लोगों ने हाथी घास उगाना शुरू कर दिया, चारे की,
0: नेपियर,
1: इसलिए क्योंकि वो ना एनिमल डिस्ट्रॉय करेगा, और उनका गाय छोड़ दो भैंसे छोड़ दो वो वहां पे चरेंगी, उसका दूध जो है आसानी से, आजकल कंपनीज उनके गेट तक आ रही हैं दूध जमा करने के लिए, तो कोई क्यों मिलेट उगाएगा। हाँ, जहां तक खाने का सवाल है, खाना खाने का सवाल है, राशन में पीडीएस में उनको सारा अनाज मिल जा रहा है, पैसा उनके हाथ में आ रहा है, कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। हमारा एक और चैलेंज ये कि हम सिखा तो रहे हैं लोगों को कि भैया तुम लड्डू बनाओ नमकीने बनाओ इनसे, उनको भी खरीद के बनानी पड़ रही है क्योंकि वो उगा नहीं पा रहे हैं इन चैलेंजेस को लेते हुए। पर जो उगा पा रहे हैं किसान उगा रहे हैं, पर वो इतने बड़े स्केल में नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ऐसा बेनिफिट मिल पाए। तो ये चैलेंजेस हैं, हम कोशिश में लगे हुए हैं।
0: अभी आप एक मैप दिखा रहे थे मेरे को, एक नक्शा।
1: बिल्कुल,
0: उसमें आपने बताया कि जो ब्लैक है ये सब मिलेट है।
1: सब मिलेट था,
0: 80% भारत में मिलेट इतना था और कहीं ग्रीन दिख रहा था। क्या मिलेट की अभी भी वो स्थिति है या हम ग्रीन वाले पार्ट में पहुंच गए?
1: मैं अनफॉर्चुनेटली ग्रीन वाले पार्ट में भी नहीं पहुंचे हम, अब इतना मार्जिनल हो गया है कि केवल 9% एरिया में मिलेट उग रहा है। इतना बड़ा जो हम लोग अपने को बोलते हैं कि हम खेती करने वाला देश है, ये हमारा 9% पहुंच गया हमारा, ये ना के बराबर मार्जिनल खेती हो रही है मिलेट की, ज़्यादातर कैश क्रॉप से ये रिप्लेस हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम सब लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो हमने डिक्लाइन देखा है धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखा, कहाँ जहाँ 80% लोग इसको उगाया करते थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे इतना नीचे आ गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत चैलेंजेस आए, उस समय उसकी जरूरत थी हमारे, पर वो क्या हुआ कि यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होता गया, वापसी का उसने रास्ता ही नहीं देखा। और उसमें जो है ये जो हमारे श्री अन्न आज हम बोल रहे हैं, मोटे अनाज जो है गरीबों का अनाज बन के रह गए, वही जो मार्जिनल किसान थे वही उगा पा रहे थे, जो नहीं खा पाते थे उस समय राइस, फिर आपके पीडीएस में मिलने लगा, ये फ्री मिलने लगा।
0: अभी मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि डिमांड तो है, ठीक सप्लाई नहीं है,
1: सप्लाई नहीं है,
0: और किसान करना नहीं चाहते इसको,
1: किसान करना नहीं चाहते, अभी इतना इंसेंटिव
0: तो
1: नहीं।
0: क्या क्या रीजन है, जैसे कि जो सप्लाई चेन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, यही रीजन रहे मैम?
1: बिल्कुल,
0: उसमें जो इंटरवेंशन आप बता रहे हैं कि हम उसको वैल्यू एड कर सकते हैं,
1: वैल्यू एड करने के बाद भी हमें मार्केट चाहिए उनके लिए, वैल्यू एडिशन आप जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं वो उनको भी तो खरीदना है ना, उनके पास जो खेती है उसमें वो घास उगा के खुश है क्योंकि दूध से उनको पैसा मिल जाएगा, वो भी अगर खरीद के, अगर वो 140 रुपए खरीद के लड्डू बना रहे हैं किसी चीज का, तो क्या कीमत उनको कहाँ बाजार मिल रहा है उसका,
0: बाजार की भी
1: दिक्कत है, क्योंकि चीज महंगी हो रही है।
0: तो अभी आपकी किताब में देख रहा था मिलेट्स फॉर लाइफ,
1: हाँ जी,
0: तो क्या भूमिका है उसमें और क्या आपने उसमें बताया है, किस तरह से उपयोगी है वो किताब?
1: मिलेट्स फॉर लाइफ जो है पूरा हमारा जो भी अभी तक प्रोजेक्ट में हमने मिलेट, पहले तो उसमें सब कुछ है मिलेट के बारे में, किस तरह से वो लोगों के लिए, मिलेट्स को पता है आपको मैं बताऊं, मिलेट्स को हम स्मार्ट क्रॉप बोलते हैं, हाँ सुपर फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे स्मार्ट क्रॉप? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये हम मनुष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये ऐसा है कि एक तीर से दो नहीं कई कई निशाने मार सकते हैं अगर हम मिलेट को उगाएं। तो बेसिकली इस किताब में इसी चीज को हाईलाइट किया गया और किस तरह से ये गंगा में फिट बैठती है, गंगा के पर्यावरण, गंगा के जल के संरक्षण में ये फिट बैठती है, उसके बारे में चर्चा है कि किस तरह से हमने इसको अपने गंगा के मिशन से जोड़ा है, कि कैसे ये आपके पानी के संरक्षण, पानी के पोल्यूशन, पानी के कंजर्वेशन, जैव विविधता पे एडिशन कर सकती है। उसके अलावा जो उगाने वाला किसान है, अगर उसको इक्विप कर दिया जाए, उसको बीज प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको वैल्यू एडिशन सिखाया जाए, उसको हर तरफ का एक सपोर्ट मिल पाए, तो ये उसके लिए एक लाइवलीहुड का भी बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स हैं, पर आप अगर बोलेंगे बहुत बड़े स्केल में, तो अभी हमारी जारी है अभी यात्रा, पर हमने जो सक्सेस स्टोरीज देखी हैं वो सच में दिल को छूने वाली
0: है। एक स्टोरी जानना चाहेंगे, सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे।
1: एक सक्सेस स्टोरी ये है, मैं दो बताती हूँ बल्कि। एक तो यही है कि 25 साल बाद हमने जब बीज के बदले बीज का ये किया, तो हमारी एक महिला गंगा प्रहरी है उत्तरकाशी में, तो मुझे याद है कि ऐसे साड़ी में बांध के ले गए लोग अपने सीड्स, और हम आपस में बात कर रहे थे, हम कहते थे आधे लोग तो ऐसी, हमने इतनी मुश्किल से एक को जमा किया, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे फेंक देंगे इधर उधर, पर जितनी औरतें वो अपनी उस साड़ी के चुन्नी के दुपट्टे में बांध के वो लेके गई, सब ने उगाया। किसी के ने बोला मैडम जानवर ने खा लिया, किसी के ठीक से हुए नहीं, किसी का बादल फटा, कुछ अलग अलग अलग एग्जाम्पल हुए, पर कई लोगों ने एक एक पाव उगाया, आधा आधा किलो उगाया, और मतलब वो हमारे लिए इतना, और अब वो हो गया, ये मैं आपको बात अभी से 2 साल पहले की बता रही हूँ, 3 साल पहले की। तो अब जो है उनके पास इतने इतने बीज हो गए हैं कि हम उनसे बोलते हैं हमें भी थोड़ा दे देना, हम और आगे बांटेंगे। और जो हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट थे आसपास एरिया के, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो फील्ड असिस्टेंट थे, वो उनका एरिया हमारी स्टडी में आता भी नहीं था, वो भी हमसे मांग के लगे मैडम हमको देना, हम अपने गांव में करेंगे। और उन लड़कों ने प्रचार किया, ये जो मेरी किताब है इसमें हमने एक मिलिट्री जो है हीरोज, मिलिट्री हीरोज नाम दिया, जिन्होंने मिलिट पे काम किया और प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो उनका जिक्र है इसमें, कुछ 7-8 लोगों का, उस लेडी की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका भी है, चंपावत से भी एक लेडी है, उनका जिक्र भी है। और अपने वेस्ट बंगाल जो ज़्यादातर भात चावल खाने वाले लोग हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ एक गंगा प्रहरी है, बच्चा है, एक छोटा सा 23-24 साल का लड़का है, उसने इतना ज्यादा इस मिशन पे काम किया है, उसने कितने किसानों को कन्वर्ट कर दिया जो वहाँ की सूखी भूमि है, और वो सूखी भूमि पहले नहीं थी, अब भी है क्योंकि पानी पड़ना कम हो गया, अब कितना पानी चाहिए राइस उगाने के लिए, तो उसने वहाँ पे 80 महिला किसानों को जोड़ के कई किलो, मतलब उसने पूरा जो है इसी का काम में लगा हुआ है वो। अब वो जो है हम लोग उनको जाके वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, वो इधर उधर से भी सिखवाता रहता है उनसे, तो वो सब कुछ मतलब वो ऑनलाइन भी करने लगा है, तो मतलब इट्स वेरी,
0: जैसे अभी हम अलग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: अभी उत्तराखंड में तो हम मुख्य रूप से मंडवा और झंगोरे,
1: हाँ,
0: को ही जानते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: इसके बहुत से प्रकार है,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ,
0: तो जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ किस खास तरह का मिलेट होता है?
1: देखिए मैं बताती हूँ, अगर हम डिफाइन करें मिलेट को ना, तो मिलेट 2 प्रकार के हैं, वैसे तो वैरायटीज बहुत हैं, 200 से ऊपर ज्यादा वैरायटीज हैं, पर जो अभी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, खाए जा रहे हैं, 2 प्रकार के हैं। एक होता है मेजर मिलेट, एक होता है माइनर मिलेट। मेजर से आपको नाम से पता चलेगा ज्यादा, मेजर मिलेट ऐसे हैं जो ज्यादा एरिया में उगाए जा रहे हैं, जिनका साइज भी बड़ा होता है और इनके बाहर छिलका नहीं होता है, तो इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी आसान होती है। इनकी प्रोसेसिंग आसान है इसीलिए थोड़ा ज्यादा उगाया जा रहे हैं। इसमें आते हैं आपके जवार, बाजरा और मंडुआ, ये मेजर मिलेट है। ज्यादातर इन मिलेट को हम आटे के फॉर्म में खाते हैं, रोटी के फॉर्म में आटा बना के खाया जाता है इनको, और इनकी प्रोसेसिंग में क्योंकि इसकी बाहर का छिलका इतना सख्त नहीं होता है, तो ये जो है लोग उगाना पसंद भी करते हैं, बहुत सबसे ज्यादा फॉडर के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है ये। दूसरा हो गया माइनर मिलेट। माइनर मिलेट जो है उसको मिलेट राइस भी कहा जाता है, वो चावल की तरह खाए जाते हैं, वो जो है उसमें भी आपके 6 प्रकार हैं। तो जो है 6 प्रकार के मिलेट हैं, उसमें एक तो आपका झंगोरा ही हो गया जिसको हम बार्नियार्ड मिलेट कहते हैं, एक कोणी हो गया जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, एक लिटिल मिलेट होता है जो यहाँ नहीं होता है, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है पर उसको यहाँ भी उगाया जा सकता है, और एक हो गया ब्राउन टॉप मिलेट, ये भी ज़्यादातर साउथ इंडिया में उगता है, एक हो गया कोडो मिलेट जो कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नंबर वन है। कोडो मिलेट के तो बीज खत्म हो गए थे दुनिया से, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीज आज सारी दुनिया में घूम रहे, छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल से बीज लिए गए थे ये थी। तो ये और एक प्रोसो मिलेट, चेना भी हमारे उत्तराखंड में उगाया जाता है, वो भी विलुप्त हो गया, नहीं मिलता है बहुत, किसी मेरी नानी के पास थे बीज, वो बेचारी को मरे हुए आज 25 साल हो गए, उनके जब कमरा साफ किया गया तो एक थोड़े से बीज उनके कमरे में मिले, हाँ, तो मतलब कि उन्होंने रखे थे ये सोच के कभी उगाया जाएगा, उस बेचारे ने

0: भी उन बीजों ने कभी खेती नहीं देखी। तो मेजर मिलेट और माइनर मिलेट, ये जो माइनर मिलेट है ना, ये दवा है। मेजर, मैं अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये दवा का काम करते हैं। श्री अन्न
1: जैसे अभी आपने हेल्थ पर भी बात कर रहे हैं, औषधि पर भी हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम पर हम बात करना चाहेंगे। तो जो इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम गंगा उसी का पार्ट है।
0: हाँ जी बिल्कुल, हाँ।
1: और जैव विविधता भी पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है।
0: हाँ।
1: तो जो मिलेट है वो इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कितना योगदान है मैम, क्योंकि आप उस पे लगातार काम कर रहे हैं।
0: हाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हमारे लिए, हमारे संदर्भ में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो मिलेट जो है, जैसे मैंने बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, कम से कम जो है इनको सुविधा चाहिए उगने के लिए। पानी, जैसे मैंने बोला, इनको 10% कम लगता है। दस जितना पानी एक साल आप धान में लगाएंगे वो 20 साल तक ये उगते रहेंगे। इनमें आप कोई किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालते। जो इनकी जड़ें हैं ना, जड़ें सिस्टम इतना, रूट सिस्टम इतना डीप होता है इनका कि ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, मतलब बहुत जो इन, और इनकी जड़ों में जो है किसी तरह के फंगस पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो वहाँ की सॉइल की उसको न्यूट्रिशन को बहुत रिच करते हैं और जैव विविधता बढ़ाती है वहाँ के। और दूसरा चीज़ इनका ये है कि जहाँ पे ये उगते हैं आपकी चिड़ियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि जो ये होती है ना सीड ईटिंग बर्ड्स, उनकी विविधता बहुत दिखेंगी आपको। मतलब लोग इससे ना घबराएं कि भाई वो चिड़िया आएंगे तो दाना खा जाएंगी, नहीं, वो चिड़िया उनका चौकीदार भी है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब आपने एक ही एरिया में हुआ है सारी चिड़िया आके खा के चलेगी, क्योंकि चिड़िया को भी मिल गया उसका फेवरेट खाना है ना। पर जब आप पूरे में उगाएंगे कितना खा जाएगी चिड़िया, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे वहाँ पे आपके, और जो चिड़ियाओं की ड्रॉपिंग्स होती हैं उससे वहाँ की सॉइल और भी रिच होती है, उस नाइट्रेट जो वो ड्रॉप करते हैं, तो उससे वहाँ की, तो वहाँ की जैव विविधता मिट्टी में भी बढ़ी, बाहर भी बढ़ी। और ये जो है, इनको एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है सी फॉर, ये घास होते हैं ये जो, इनको सी फॉर ग्रासेस बोला जाता है। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगी सी फॉर ग्रासेस क्या होते हैं। सी फॉर ग्रासेस एक तरह का कार्बन सिक्वेंसिंग है जिससे कि पौधा जमीन से किस तरह से पानी लेता है और वो हवा में किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो पृथ्वी है ना, उसमें भगवान ने, नेचर ने ऐसा बैलेंस किया कि सी फॉर क्रॉप्स दी हैं। क्यों? ये भी एक सी फॉर क्रॉप्स है, क्योंकि सी फॉर क्रॉप क्या करती है, कम इस तरह से पानी लेती है कि पानी वेस्ट ना हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कम छोड़ती है हवा में। तो जहाँ ये सी फॉर ग्रासेस होती है वहाँ पे हवा भी शुद्ध होती है। तो इस तरह का आप सोचिए कि पर्यावरण से इस तरह से ये लिंक है,
1: इसका नाता है।
0: हाँ, तो
1: बहुत बढ़िया लग रहा है मैम आपसे बात करते हुए। और मिलेट के बारे में तो काफ़ी जानकारी आपके पास है, और मुझे लगता है कि मैंने तो उसमें से मुश्किल से 2% जानकारी आपसे ले पाया हूँ।
0: और
1: अभी हम जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, कितनी और जरूरत है, क्योंकि जो आपने मुझे मैप दिखाया है मेरा ध्यान उसी पर ही टिका हुआ है कि एक समय में अपने देश में इतना मिलेट था, आज जो आप बता रहे हैं कि उसका जो ग्रीन वाला जो पार्ट है उसका भी 10% भी नहीं रह गया है, 9% आप बता रहे हैं।
0: हाँ जी, हाँ।
1: पूरी एग्रीकल्चर का 9%,
0: हाँ, जो तो कल्टीवेशन एरिया का।
1: कितनी जागरूकता की जरूरत है, और जागरूकता के लिए, क्योंकि आप मिलेट फिर लगातार काम कर रहे हैं, 10 साल से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ ही आप काम कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: तो अभी कितनी जरूरत और महसूस करते हैं?
0: बहुत बहुत। आप देखिए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के आसपास आया था, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, उस रेवोल्यूशन का हम असर अब देख रहे हैं। तो कोई चीज इतना इंटेंसिव, इतना प्रोएक्टिवली करना है ना, ये सबको करना है। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ अब तो सबको पता ही होगा मिलेट के बारे में, पर फिर भी मैं जब कभी किसी अनजान से मिलती हूँ उसको पता ही नहीं होता मिलेट क्या, उसे पता ही नहीं है कि मिलेट कौन सा अनाज को हम मिलेट बोल रहे हैं। मैं मतलब कि मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ जो है लोगों के पूरे अंदर तक घुस जाए कि मिलेट सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये जो है एक, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम का तंत्र है ना, उसमें कृषि विविधता, जैव विविधता, हमारे पारंपरिक और ट्रेडिशन संस्कृति का एक बैलेंस है ये, यू नो, बाकी चीजें जो भी हो बाद में आई गई हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि बहुत इंटेंसिवली प्रोएक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक इकोनॉमिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई नहीं करेगा। अभी कुछ दिन मुझे लोग कह रहे थे कि भैया लोगों ने गढ़वाल में कीवी उगाना शुरू कर दिया, और मुझे इतनी तकलीफ हुई इस बात से। उस किसान को पैसा बहुत मिल रहा होगा कीवी उगाने से, मैं कह रही क्यों किया उसने, मतलब कि मिलेट क्यों नहीं उगा पाया। तो कहीं ना कहीं वही सप्लाई चेन में

0: कमी है तो उसको नहीं फायदा लग रहा है उसको उगाने में। तो बहुत लंबा सफर है पर उम्मीद है अभी भी,
1: उम्मीद अभी बनी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे मिलेट पर, तो मिलेट का जो हेल्थ एस्पेक्ट उस आयाम पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी तो हम पर्यावरण पर काम कर पाएंगे, अपनी इस धरती के लिए काम कर पाएंगे। तो जो स्वास्थ्य के नजरिए से हम मिलेट को कह पाते हैं,
0: किसी ने ना एक यूएन में जो हेड थे उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, किससे भी रिलेटेड है, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा कि उसको करने वाला इंसान जब तक हेल्दी ना हो, कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। और ये क्रॉप जो है ये ना किसान और हमारी खेती और हमारी सेहत का इंश्योरेंस है। कैसे है ये इंश्योरेंस हमारी खेती का, हमारी सेहत का? जो डॉक्टर खादर वली है ना, डॉक्टर खादर वली का जो उनको मिलेट, उनको 2023 में पद्मश्री दी गई थी और उनको जो है फादर ऑफ मिलेट कहा गया, सिर्फ इसलिए वो पिछले, आप कह रहे हैं ना कितना समय लगेगा, वो पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं तब यहाँ पहुंचे हैं। तो उनका, उन्होंने ना 120 प्रोटोकॉल बनाए हैं, आप मतलब उस प्रोटोकॉल को, वो उनकी वेबसाइट में है, उस प्रोटोकॉल को आप पढ़ेंगे तो सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, कैंसर तक का इलाज है इसमें। और वो कहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया जो माइनर मिलेट है हमारा, प्रोसो को छोड़ के जो 5 माइनर मिलेट हैं, वो कहते हैं वो एक्चुअल श्रीधन है, उसको हीलिंग मिलेट कहा जाता है। हीलिंग मिलेट मींस वो आपकी कोई भी बीमारी ठीक कर देंगे, चाहे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर ब्लड प्रेशर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका थायराइड ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो अनाज है वो आप इस तरह से, उनकी बनावट है, उनमें इतना ज्यादा रेशा जिसको फाइबर कहा जाता है वो है, और रेशा ऐसा नहीं है कि बाहरी बाहर हो, अंदर तक बुना हुआ है वो रेशा। जब आप वो अनाज खाते हैं ना, तो आपने गट माइक्रोबायोम के बारे में सुना होगा, जो हमारी आंतों की माइक्रोबायोम होती है, हमारी माइक्रोबायोम कहते हैं कि अगर वो डिसबैलेंस हो जाए सारी बीमारियां आपको होंगी। डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो छोड़िए, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो गट, अल्जाइमर है तो गट जिम्मेदार है, हर चीज का गट जिम्मेदार है। तो इन अनाजों को, हीलिंग अनाज जो आपको ठीक करते हैं वो कहा गया है, ये जो खासकर ये 5 अनाज है, ये इसका जो फाइबर है वो गट माइक्रोबायोम को फीड करता है, इसमें ऐसा फाइबर है, और वो फाइबर जो है जब आपके गट माइक्रोम में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के आप मिलेट खाएंगे, अलग अलग तरह के आपके अंदर रेशा जाएगा, तो आपका गट माइक्रोबायोम बहुत रिच होगा, और जब गट माइक्रोबायोम रिच होगा आपका तो आप उतने ही हेल्दी होंगे, आपकी अलग अलग बीमारियां एड्रेस होंगी। तो इसको जो है हीलिंग मिलेट कहा गया, ये सेहत के लिए इतनी अच्छी है।
1: बहुत अच्छी जानकारी मैम आपसे मिली है। और अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप इस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं, 10 साल आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो गए। मैम चलते चलते आपका एक संदेश जानना चाहेंगे मिलेट को लेकर युवाओं के लिए।
0: युवाओं के लिए मेरा संदेश, जैसे मैंने ये कहा कि आप चाहें ना चाहें इसे तो अपनाना ही पड़ेगा, मतलब नेचर ने वो कंडीशन क्रिएट कर दी है कि ये हमें अपनाना ही पड़ेगा, और ये ही हमारा भविष्य है, ये अनाज है हमारा भविष्य, ये अनाज इसलिए हमारा भविष्य, ये हमारे किसान का भविष्य है, ये हमारी सेहत का इंश्योरेंस है, तो इसको तो अपनाना ही पड़ेगा, देर सवेर ही अपनाना ही पड़ेगा।
1: मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपने अभी हमें मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, आपने उसके इतिहास के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि आज हम किस स्थिति में है, जागरूकता का क्या स्तर है, और लोग मिलेट के प्रति, जो श्री अन्न है उसके प्रति कितने जागरूक हुए हैं, उसके बारे में भी आपने बताया, और आपने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से हम हस्तक्षेप करें, हम उसमें दखल करें कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, और इसका जो डिमांड और जो सप्लाई का रेशियो है वो कहाँ गड़बड़ाया हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों का क्या समाधान है, जैसा कि आपने वैल्यू एडिशन के बारे में बताया, आपने मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और आपने एक खास बात ये बताई कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उससे मिलेट कहाँ जुड़ा हुआ है, किस तरह से लोगों को एम्पावर करता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए, रेडियो कदार को आपका मूल्य समय दिया है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

0: नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान और यहां हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से। आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका स्वागत है रेडियो केदार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, जैसा कि अभी हम बात करेंगे मिलेट पर, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं। श्री अन्न का इन दिनों बहुत प्रचार भी हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं श्री अन्न पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़ने का जो यात्रा है, जो सफ़र है, उस पर आपसे जानना चाहूँगा।
1: मैं जो हूँ भारतीय वन्य जीव संस्थान से अभी नहीं जुड़ी हूँ, मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है। मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, और कई प्रोजेक्ट्स किए मैंने इसमें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए इकोलॉजी से रिलेटेड। हम लोगों का बहुत बड़ा एक आस्पेक्ट होता है, इकोसिस्टम का आस्पेक्ट होता है, जिसे हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो, और लोगों से बहुत हमारा जुड़े हुए रहते हैं।

0: हम लोग, क्योंकि हर जंगल के इर्द गिर्द लोग ही हैं, तो हमारा लोगों से भी बहुत संबंध है। तो ये जर्नी धीरे धीरे धीरे धीरे मिलेट तक, मेरे कुछ इसमें पर्सनल रीजंस भी थे इसमें आने के, कुछ हेल्थ इश्यूज थे घर में जिसकी वजह से मैंने खुद इसको यूज करना शुरू किया तो मुझे बेनिफिट मिला। फिर मैं इसी में घुस गई, इसी में ट्रेनिंग करने लगी, इसी की जानकारी मैं हासिल करने लगी। और जब मैं इसके बारे में और जानने लगी तब मुझे पता चला कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये हमारी कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो कंट्रीब्यूट करता है हमारी एग्रो बायोडायवर्सिटी में। आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए, अब ये जो वन्य जीव और जंगली जीवों की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से ये एक फसल उनके भले के साथ भी जुड़ी हुई है।
1: सवाल ये है कि आप भारतीय वन्य जीव संस्थान में आपने मास्टर इन वाइल्ड लाइफ साइंस, उसके बाद सीधा मिलेट, जो ये जो क्रम है इसको जानना चाहूंगा मैं।
0: मैं सीधा मिलेट में नहीं आई हूँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं भारतीय वन्य जीव संस्थान से बहुत सालों से जुड़ी हूँ, मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट लिए, कुछ प्रोजेक्ट मेरे कैप्टिव एनिमल्स से रिलेटेड थे, कुछ प्रोजेक्ट मेरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे, जो जंगल के आसपास वाले लोग रहते हैं किस तरह से जंगली जानवरों से वो जूझ रहे हैं, या जंगली जानवर उनकी वजह से किस तरह से जूझ रहे हैं, तो इस तरह का वो था। फिर उसमें मिलेट कैसे आया कि ये मेरा पर्सनल था, जब मैं ये सब कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरी बिटिया की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें ऐसा हुआ कि उसको, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, तो मुझे एक बार याद है, वो अभी दसवीं आठवीं क्लास में थी शायद, रात को हमें 12 बजे फोन आया कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में, और वो बैंगलोर के पास पढ़ रही थी। तो हम अगले दिन पहली फ्लाइट पकड़ के गए और जो है उस लड़की को 15 दिन की छुट्टी में लेके आ गए, तो वहाँ पता चला कि उसको बहुत भयानक एलर्जी हो रही थी। मतलब जब मैंने उसको वहाँ पे देखा, उसको ऑक्सीजन लगा के रखा है, लग रहा मैं बस ये सोच रही थी कि अगली सांस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, मैं इतनी डरी हुई थी उस समय उसकी वो हालत देख के। तो फिर जब मैं वहाँ अस्पताल से निकली तो मुझे याद है इतना बड़ा पॉलीथीन बैग डॉक्टर्स ने मुझे थमा दिया और बोला कि बिल्कुल ये नॉर्मल बच्ची है, कुछ नहीं है, बस इसको 8 बार ये पफ लेना पड़ेगा स्टेरॉयड के पफ, उसके बाद शी इज़ नॉर्मल, वो कुछ भी खेलेगी कूदेगी जो भी है, बिल्कुल खुशी के साथ ये वो सब करेगी। अब इस चीज़ ने जो है, मैंने उसी समय सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ और ये दवाइयों के सहारे नहीं रहेगी, अभी मेरी बच्ची जो है 15 साल की भी नहीं है। जो मैं घर में लेके आई उसे, 15 दिन की मैं छुट्टी में लेके आई, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कुछ नेचुरोपैथ से कॉन्टैक्ट किया, उसको मैंने जिस डाइट में रखा उसमें अनाज की जगह मैंने मिलेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उन 15 दिनों में 6वें दिन में मेरी लड़की के इनहेलर्स ख़त्म हो गए, सब कुछ, मतलब शी वॉज नॉर्मल, मतलब जो ये मेरा अपना, उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे इसके बारे में और जानना है, ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। फिर उसके बारे में, फिर मैं वैसे एक हेल्थ कोच भी हूँ, मैंने वो कोर्सेज बाद में किए, इसके साथ साथ किए मैंने ये कोर्सेज, पर जब मैं इसके बारे में पढ़ने लगी, जानने लगी, मैंने दुनिया भर की ट्रेनिंग्स करी, तब मुझे समझ आया कि ये ना केवल हमारे सेहत के लिए इतने अच्छे हैं, पर हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। ये बात मुझे बाद में समझ आई और हम इस बारे में डेफिनेटली डिटेल में चर्चा करेंगे।
1: मैं एक इंसिडेंट ने आपकी दिशा बदल दी, आज आप मिलेट्स की तरफ बढ़ गए हैं और आपने इसमें एक्सपर्टीज हासिल की है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं। गंगा जो संरक्षण की हम बात करते हैं, गंगा में पलने वाले जलीय जीवों के प्रति संवेदनशील होने के लिए जो हम बात करते हैं, उस प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो गंगा संरक्षण है उसमें मिलेट कहाँ है और मिलेट का रोल क्या है।
0: पहले मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी हमारे डीन को, डॉक्टर रुचि बडोला, ये बात 2019 की है जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और तब मैं इस प्रोजेक्ट से अंदर आके नहीं जुड़ी थी, तो उस समय हम लोगों का एक्सेस नहीं था कि हम गंगा प्रहरी से बात कर पाए, मतलब गंगा प्रहरी को बुला पाए किसी ट्रेनिंग के लिए या कुछ कर पाए। उस समय मैम ने मुझे इन्वॉल्व किया इस प्रोजेक्ट में, एज अ रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व किया उस समय, एज अ कंसल्टेंट इन्वॉल्व किया, और हमने 2019 से इतनी वर्कशॉप्स करी, अवेयरनेस की इतनी वर्कशॉप्स करी, मतलब कुकरी की क्लासेस करी ऑनलाइन लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि लोग उस समय बीमार चल रहे थे कि किस तरह से ये आपकी मदद कर सकते हैं आपकी हेल्थ के प्रति। और अब जब आप गंगा की उसकी बात कर रहे हैं, मैं अगर पर्यावरण को लेके बात करूं, आपको मालूम है जो मिलेट है, ये जो है श्री अन्न तो इनको बोला ही जाता है, हाँ, ये वो सबसे प्राचीन हमारे अनाज है, जो कि पहला जब कृषि का डोमेस्टिकेशन हुआ था ना, इन अनाजों से हुआ था। तो ये वो कहते हैं ये वो सोना है जो तप के निकला है, धरती ने इतने उबड़ खाबड़ इतने प्रलय देखे पर ये नहीं हिला, इसने फिर भी लोगों का पेट पाला है 5,000-10,000 साल पहले से। तो ये वो सोना है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे कैसे हमारी गंगा के साथ ये जुड़ सकता है? आपको मालूम है जो हम ये मिलेट है इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप कहा जाता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का मतलब ये है जो क्रॉप किसी भी स्ट्रेस में उग सकती है। आपने देखा कितनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में हमारी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, बट मिलेट एक ऐसी है जो तेज से तेज गर्मी सह सकती है, उसके बाद भी उगेगी और आपका पेट पालेगी। दूसरी बात, इस पौधे को उगाने में, इस घास को उगाने में आपको बहुत कम पानी चाहिए। गंगा हमारी देखिए किस तरह से कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर का जो वाटर टेबल है कितना नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि इतना इरिगेशन के लिए इतना पानी चाहिए हम लोगों को। ये फसल जो है ना 10% लेस पानी लेती है। डॉक्टर खादर वली, ये पता नहीं कितने लोगों ने उनका नाम सुना होगा, फादर ऑफ मिलेट कहा जाता है उनको। उनका कहना ये है कि जितना पानी हम एक साल अपने धान में लगाते हैं उससे आप 20 साल तक मिलेट उगा के लोगों का पेट पाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये पानी के कंजर्वेशन में काम आता है। दूसरा, इसको किसी तरह की पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है गंगा कितनी पोल्यूटेड हो रही है, कितना पेस्टिसाइड क्विंटलों में उसमें जा रहा है खेती का जी। हमारा वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो कितना पोल्यूटेड हो रहा है। ये क्रॉप्स कुछ नहीं मांगती हैं आपसे, सिर्फ ये चाहती हैं हमें उगा दिया जाए। ये इतनी स्टर्डी होती हैं, इनको किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली नेचुरल है। तो अगर हमें कोई चीज़, हम ऐसी क्रॉप इंट्रोड्यूस करें जो हमारा पानी बचा रही है, कोई क्रॉप ऐसी इंट्रोड्यूस करें जो हमारा हमें जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो गंगा के संरक्षण में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि गंगा के जो संरक्षण है उसमें इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने अभी इसकी खासियत भी बताई।
0: हाँ। लेकिन और भी हैं एन नंबर्स आगे, और आप अभी बताना चाहते, सुनना चाहते तो मैं अभी बताती हूं।
1: बिल्कुल मैम, और धीरे धीरे आपसे बातचीत होती रहेगी तो लगातार इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैम मैं जानना चाहूंगा कि जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप गंगा संरक्षण अभियान से जुड़े हैं, आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच गए, कम्युनिटी से मिले,
0: कम्युनिटी से
1: 11 हाँ। राज्यों में, बेसिन एरिया में 5 राज्य है जो गंगा जहाँ से होकर गुजरते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लोगों के पास पहले से एक अलग क्रॉप है
0: हाँ।
1: जिसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: और क्योंकि उनको लगता है कि भाई गन्ना उगाएंगे तो गन्ना सीधा जाएगा और सीधा पैसा मिल जाएगा।
0: एब्सोल्युटली हाँ।
1: तो क्या चैलेंजेस आए, क्या लोगों को जब आपने समझाया इसके बारे में तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे, किस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी?
0: बहुत चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि जैसे आपका कहना है कि पूरे बेसिन में हम जा रहे हैं, उत्तराखंड में तो कम से कम कुछ लोग जानते हैं, अभी भी उगा रहे हैं इसको, और बाकी एरियाज में लोगों ने तो देखा भी नहीं है इसको, इसके बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं है और उनके पास कोई रीज़न नहीं है इनको उगाने का। तो हम लोगों के लिए वो स्ट्रगल तो था ही, पर यही है हमने वर्कशॉप के दौरान बहुत सारी हमने उन लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात है जैसे हमारा एक कार्यक्रम आपने जलज का भी सुना होगा कंपोनेंट है, उसमें लाइवलीहुड का कंपोनेंट है, तो उसमें हमने क्या किया कि महिलाओं को जोड़ा उससे, और महिलाओं को हमने बहुत अवेयरनेस की क्लासेस दी किस तरह से वो सेहत के लिए अच्छे। जो एक महिला होती है ना घर की, उसका हमेशा फोकस घर होता है, फैमिली का एक हेल्थ, फैमिली का स्वास्थ्य होता है, तो जब आप उनको जोड़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट जागता है। आज महिला के हाथ में खेती नहीं हो, बाजार के हाथ चली गई, हस्बैंड्स के हाथ में चली गई। मतलब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम यूपी में क्लासेस ले रहे थे तो जब मैं यूपी में उनको सिखा रही थी, यूपी में लोग ज्यादातर बाजरा और ज्वार उगाते हैं, वो भी खाने तक नहीं जाता है, उसको वो आधे ही जब वो थोड़ा कच्चा होता है उसमें काट दिया जाता है, गाय भैंस को खिलाया जाता है कि उससे दूध की मात्रा बढ़ती है, दूध के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उनको यही सिखा रही थी कि तुम सोचो जानवर का दूध बढ़ रहा है तो तुम्हारे घर में जो औरतें बच्चा जिनका होने वाला है या जो अपने बच्चों को पिला रही है उनके लिए कितना अच्छा होगा ये। तो मैं हमने बहुत सारी मतलब उनके सेहत से रिलेटेड कई चीज़ें, उनको शायद पर्यावरण वाली बात में इतना मज़ा नहीं आया, पर जो फैमिली की हेल्थ वाली बात थी वो उनको सच में छू गई। तो एक औरत ने बोला मैडम आपके कहने पर, मैंने अपने हस्बैंड से इस बारी बोला कि भाई कम से कम जो है आधा क्विंटल बाजरा बचाना, मैं रोटी खिलाऊंगी बच्चों को, घर में बना के रोटी खिलाऊंगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला तुम भी डंगर हो गए हो क्या? तो मतलब कहने का मतलब ये कि उसका कहने का मतलब ये कि मैं चाहती हूँ वो चेंज, पर मुझे शायद अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शायद उसे बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा या डंगरों को खिला के जो दूध मिले बेच के उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो और एक तो ये तरीका, और दूसरा हम इनको वैल्यू एडेड आइटम सिखाते हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे उससे आप क्या बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, नमकीनें बना सकते हैं, तो उनको लेडीज़ को भी ये लगता है कि हम कुछ करके बना के जो है ये बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में है डिमांड, एक नीश, एक जो अवेयर लोग हैं वो चाहते हैं इसके बने हुए आइटम्स खाना, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उनको एक कमाई का जरिया मिला। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हम लोगों ने जब हम ये कर रहे थे ना, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे तो उस समय मैंने एक छोटे से एक सेइंग बनाई, तो उस समय मैंने ये बोला कि जो ये कहती थी कि मोटे अनाज का ये किस्सा होगा, नारी तेरी साड़ी में खिस्सा होगा, मतलब वो बात से उनको इतनी वो लगी, कहती मैडम हमको भी पॉकेट चाहिए अपनी साड़ी में, क्योंकि हम इसके द्वारा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट एक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक वो रीजन है। कभी भी औरत के किसी भी कपड़े में पॉकेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होती थी, ये पावर भी आदमी को दिया गया था। तो इसलिए जब ये बात हुई वो इतनी खुश हुई, कह रही मैडम हमें भी अपनी साड़ी में एक हिस्सा चाहिए। अब वो अलग बात है आजकल साड़ियां आ रही है मोबाइल रखने के लिए, बट मतलब कि दिस वॉज इस तरह का हमने अवेयरनेस किया, और औरतें जो हमारे साथ बहुत जुड़ी। उत्तराखंड में हम लोगों ने बीज के बदले बीज का एक आंदोलन हमने हर जगह चलाया, वो उत्तराखंड में 25 साल बाद फॉक्सटेल मिलेट उगाया गया, जो हमारे जो गंगा प्रहरी महिला है उसने अपने खेत में एक मतलब 25 कह रही मैडम 25 कह रही मेरी बूढ़ी नानी दादी कहती थी ये हम लोग खाया करते थे, कि यदि मैम यहाँ किसी ने वो बीज नहीं देखा था, हमने इतनी मुश्किल से वो बीज जमा, मतलब ये सबसे बड़ा स्ट्रगल बीज का है, तो हमने वो बीज प्रोक्योर करके बांटा। ऐसे ही हमने उत्तर प्रदेश में ये सेम चीज करी।
1: बीज की आप बात कर रहे हैं, बीजों के संरक्षण पर भी एक बड़ा मूवमेंट उत्तराखंड में चला है, तो जो बीज का जो संरक्षण है उसको कैसे करते, क्योंकि गंगा का कंजर्वेशन तो अलग है, बीजों का सीड कंजर्वेशन भी एक है, तो सीड कंजर्वेशन पे मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे संरक्षित रखते हैं बीजों को।
0: टेक्निकली मतलब कि इसके बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि उसको रखने के तो अलग अलग तरीके हैं, और सबको पता है, महिलाएं किसान सबको पता है, पर बीज होने भी तो चाहिए, विलुप्त हो गए, प्रॉब्लम है विलुप्त हो गए। तो मैं जैसे ही आपको बोल रही हूँ, कोणी बोलते हैं जैसे फॉक्सटेल मिलेट को कोणी बोला जाता है, कोणी रोज के चावल की तरह खाया जाता था उत्तराखंड में, आज देखने को नहीं मिल रहा। उसके जब हम लोगों ने बीज कलेक्ट किए साउथ इंडिया से, तो हमें काफ़ी मिल रहे थे, क्योंकि साउथ इंडिया में ये मिशन काफ़ी साल पुराना हो गया है, उड़ीसा मिशन काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो जब हम बीज ढूंढने लगे लोगों ने बोला साउथ के बीज है, हमने बोला नहीं हम पहले साउथ के, क्योंकि वेराइटीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो हमने बोला नहीं हम लोकल बीज ही कहीं ना कहीं से लाएंगे, तो किसी से कॉन्टैक्ट किया, किसी के पास पुराने पड़े होंगे, हमारे जरदारी जी है वो मैंने एक किताब लिखी है उसमें भी उनका जिक्र है, तो सर से भी हमने कुछ बीज अरेंज किए, क्योंकि सर जो हैं अपने थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, तो वो बीज ही बचा रहे हैं, वो ये जो हमारी जो गंगा प्रहरी औरतें हैं उनको हमने मुट्ठी भर बीज दिया था, उससे उन्होंने 5 किलो बीज बना दिया, वो उन्होंने अभी तक बेचा नहीं हो, अभी हम कह रहे हैं अभी तुम सिर्फ इतना करो कि बीज को मल्टीप्लाई करो, अभी उस हालत में नहीं पहुंचा है कि उसका कमर्शियलाइज कर पाएं, उसको यूज कर पाएं, तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा जो बेच के हम वो जो बीज बांट के जो हम उगा पा रहे हैं उससे सिर्फ हम उनका संरक्षण की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। दूसरी बात इन बीजों की ये है, जो मिलेट के बीज होते हैं, अगर आपने इनका छिलका नहीं निकाला, अगर आपने इनको छेड़ा नहीं है, तो आप इनको 20-20, 30-30, 40 साल तक के लिए रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे, इनमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा, तो ये जो है अपने आप में जो है सबसे आसान है किसान के लिए, अगर बीज हो गए तो आप जो बीजों से इतनी कमाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, और अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आप हमें बता रहे हैं श्री अन्न के बारे में, श्री अन्न के महत्व के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि श्री अन्न को इस्तेमाल करना लोगों ने लगभग बंद कर दिया था, आज की डिमांड बढ़ रही है, क्या सप्लाई उस तरह से हो पा रही?
0: नहीं, बिल्कुल डिमांड भी जो है बहुत लिमिटेड लोगों के द्वारा है, जिनको इसकी अवेयरनेस है, आम आदमी को आज भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो जिनको पता चल गया है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो और जो जितनी डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। अब क्या है, प्रोडक्शन और डिमांड के बीच की जो सप्लाई चेन है ना, उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं है, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। आज भी किसान जो है इसको नहीं उगाना चाह रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं उगाना चाह रहा है क्योंकि इसमें पैसा नहीं है इस समय, और जो अगर इवन वो उगाता है, हम लोग बोलेंगे कि जैसे गढ़वाल का मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो बोलते हैं मैडम हम उगाने को तैयार है, सब कुछ है, हमें मिलेगा क्या? हाँ, जो भी MSP गवर्नमेंट ने जो रखी है, या मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, बहुत है, मतलब 2023 आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है मिलेट एयर सेलिब्रेट किया था हमने, तो अभी तक सब लोगों को वो जानकारियां नहीं है। और जो कुछ अनाज ऐसे हैं इसमें जिनके छिलके होते हैं, उनको उगाने के बाद जो है प्रोसेसिंग इज सो डिफिकल्ट, उस प्रोसेसिंग की अभी सुविधा नहीं है लोगों को। वो उगा तो दें उसके बाद क्या करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है कि मार्केट तक उसे पहुंचा पाए, और हर चीज में जो है खर्चा ऐड हो रहा है, खर्चा ऐड हो रहा है। तो जैसे अगर आप देखेंगे गेहूं हो गया या राइस हो गया, राइस मिल की हर जगह राइस मिल है, आसान है लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत जो उनका सिस्टम जो है वो सप्लाई चेन का सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत एडवांस है। तो इसमें जो है सप्लाई चेन में अभी भी जो है सप्लाई चेन में जो एडवांसमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। जो किसान है उसको इसका फायदा तो पता है, पर उसे ये नहीं मालूम है कि वो इससे कमाई कैसे कर सकते।
1: अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है और WII से जुड़े हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप गंगा संरक्षण पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप मिलेट यानी कि जिसे हम सीरियन कहते हैं उस पर भी आपका बड़ा काम है। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, खेती बंजर हो रही है, जहां जाओ वहां खेतों को खाली देखो। मिलेट की कितनी संभावनाएं हैं, और अगर संभावनाएं हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दखल की जरूरत है, उस पर आपको जानना चाहूंगा।
0: देखिए जहां तक पलायन का सवाल है वो तो खैर हमारे हाथ की बात नहीं है, पर फिर भी परिवार रह रहे हैं, खेती है, और बंजर जो भूमि हो रही है, मिलेट जो है बंजर भूमि का ही अनाज है। बाकी आप वहां पे कुछ उगा सके ना उगा सके, मिलेट डेफिनेटली उगा सकते हैं, पर देखने की बात यह है कि आप उस मिलेट को उगाने के बाद वहां के किसान को क्या फायदा दे पा रहे हैं। जैसे हमने बताया प्रोजेक्ट में जो है हम लोग बीज भी बांट रहे हैं, लोगों को उगाने के लिए भी कह रहे हैं, और उससे वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। झंगोरे से जैसे कई चीजें बनाना सिखा रहे हैं हम, झंगोरा इटसेल्फ भी अगर आप पैकेट में बेचेंगे तो 140 रुपए किलो या 155 रुपए किलो मिल रहा है, जो अनपॉलिश झंगोरा है जिस तरह का हमारे उत्तराखंड में होता है। मंडवे से कई तरह की चीजें बनाना सिखा रहे हैं, पर अब ये है कि वहां पे लोग झंगोरा उगाने को तो तैयार है, पर उसके बाद जो उसकी प्रोसेसिंग करनी है, आज की महिला के पास टाइम नहीं है कि उसको कूटती रहे, और कूटने के बाद जो है उसमें काफी अनाज नष्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन अनाजों के साथ जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो उनको लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी यूनिट्स की आवश्यकता है। पॉलिसी मेकर्स ने जैसे 2023 में बहुत स्कीम्स बनी, ऐसी स्कीम भी बनी जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप है कि सारी फसलें खा जाते हैं, तो कई जगह जो है उन लोगों को इसके बेनिफिट भी दिए गए कि इंश्योर कराई गई, अगर मिलेट उगाएंगे तो क्रॉप इंश्योर की जाएगी तो बेनिफिट मिलेगा, ये सब किया गया। पर ये स्कीम सब तक पहुंची है कि नहीं, ये एक बात है। और अगर आप उनको उगाने के लिए बोल रहे हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम बाउंड है, हम उनको सक्षम बना दे रहे हैं, हम उन्हें सिखा दे रहे हैं कि आप इस चीज से ये आइटम बना सकते हैं। आज की डेट में क्योंकि प्रोजेक्ट है, हम उनका आइटम लेके अपने जलज में भी रख रहे हैं कि चलो उनको एक कमाई मिल जाए, पर सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको और भी मार्केट चाहिए, तो वो सुविधा अभी नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली पॉलिसी मेकर का इंटरवेंशन चाहिए, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनको मार्केट चाहिए, यू नो, ये सब चीजें अभी कहीं ना, जैसे कि आपकी मिलिंग यूनिट्स हैं, अगर मिलिंग यूनिट्स उनके आसपास ही हो जाएं तो वहीं पे उनके ग्रेन्स की सॉर्टिंग हो जाएगी, वहीं उनकी जो है हस्किंग हो जाएगी, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप रेडीमेड एक पैकेट भी बना के दे देंगे तो वो बिकने को तैयार हो जाता है। तो अभी ये कंस्ट्रेन है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात वाइट रेवोल्यूशन की बात करना चाहूँगी दूध को लेके। ये मेरा चंपावत में एक्सपीरियंस है। चंपावत में क्या है, यहाँ पे एक तो चकबंदी नहीं है, ये जो रहने वाला किसान है उसकी जमीन इधर भी है उधर भी है, चार यू नो कोस दूर भी है, सब अलग अलग अलग जगह फैली है, मतलब उसके नाम की जमीन जो है, अब वो कहाँ कहाँ कहाँ अपना रखवाली करता रहेगा जानवरों से। तो अब लोगों ने वहां पे क्या किया, मैंने देखा है वहां पे लोगों ने हाथी घास उगाना शुरू कर दिया, चारे की,
1: नेपियर,
0: नेपियर, इसलिए क्योंकि वो ना एनिमल डिस्ट्रॉय करेगा, और उनका गाय छोड़ दो भैंसे छोड़ दो वो वहां पे चरेंगी, उसका दूध जो है आसानी से आजकल कंपनीज उनके गेट तक आ रही हैं दूध जमा करने के लिए, तो कोई क्यों मिलेट उगाएगा। हाँ, जहां तक खाने का सवाल है, खाना खाने का सवाल है, राशन में पीडीएस में उनको सारा अनाज मिल जा रहा है, पैसा उनके हाथ में आ रहा है, कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। हमारा एक और चैलेंज ये कि हम सिखा तो रहे हैं लोगों को कि भैया तुम लड्डू बनाओ, नमकीने बनाओ, इनसे उनको भी खरीद के बनानी पड़ रही है, क्योंकि वो उगा नहीं पा रहे हैं इन चैलेंजेस को लेते हुए. पर जो उगा पा रहे हैं किसान उगा रहे हैं, पर वो इतने बड़े स्केल में नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ऐसा बेनिफिट मिल पाए. तो ये चैलेंजेस हैं, हम कोशिश में लगे हुए हैं.
1: अभी आप एक मैप दिखा रहे थे मेरे को.
0: हाँ,
1: एक नक्शा.
0: हाँ, बिल्कुल. हाँ.
1: उसमें आपने बताया कि जो ब्लैक है,
0: हाँ,
1: ये सब मिलेट है.
0: सब मिलेट था.
1: 80% में भारत में मिलेट इतना था और कहीं ग्रीन दिख रहा था.
0: हाँ.
1: क्या मिलेट की अभी भी वो स्थिति है या हम ग्रीन वाले पार्ट में पहुंच गए?
0: मैं अनफॉर्चुनेटली ग्रीन वाले पार्ट में भी नहीं पहुंचे. हम अब इतना मार्जिनल हो गया है कि केवल 9% एरिया में मिलेट उग रहा है. इतना बड़ा जो हम लोग अपने को बोलते हैं कि हम खेती करने वाला देश है, ये हमारा 9% पहुंच गया हमारा, ये ना के बराबर मार्जिनल खेती हो रही है मिलेट की. ज़्यादातर कैश क्रॉप से ये रिप्लेस हो गई है. और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम सब लोग जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो हमने डिक्लाइन देखा है धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखा, कहाँ जहाँ 80% लोग इसको उगाया करते थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे इतना नीचे आ गया. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत चैलेंजेस आए, उस समय उसकी ज़रूरत थी हमारे. पर वो क्या हुआ कि यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होता गया, वापसी का उसने रास्ता ही नहीं देखा. और उसमें जो है ये जो हमारे श्री अन्न आज हम बोल रहे हैं, मोटे अनाज जो है गरीबों का अनाज बन के रह गए, वही जो मार्जिनल किसान थे वही उगा पा रहे थे, जो नहीं खा पाते थे उस समय राइस. फिर आपके पीडीएस में मिलने लगा, ये फ्री मिलने लगा.
1: अभी मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि डिमांड तो है,
0: है.
1: ठीक, सप्लाई नहीं है.
0: सप्लाई नहीं
1: है. और किसान करना नहीं चाहते इसको.
0: किसान करना नहीं चाहते, अभी इतना इंसेंटिव
1: तो
0: नहीं.
1: क्या क्या रीजन है? जैसे कि जो सप्लाई चेन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं. यही रीजन रहे मैम?
0: बिल्कुल.
1: तो उसमें जो इंटरवेंशन आप बता रहे हैं कि हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं.
0: वैल्यू ऐड करने के बाद भी हमें मार्केट चाहिए उनके लिए. वैल्यू एडिशन आप जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं वो उनको भी तो खरीदना है ना. उनके पास जो खेती है उसमें वो घास उगा के खुश है क्योंकि दूध से उनको पैसा मिल जाएगा. वो भी अगर खरीद के, अगर वो 140 रुपए खरीद के लड्डू बना रहे हैं किसी चीज का, तो क्या कीमत उनको कहाँ बाजार मिल रहा है उसका?
1: बाजार की भी
0: दिक्कत है, क्योंकि चीज महंगी हो रही है.
1: तो अभी आपकी किताब में देख रहा था मिलेट्स फॉर लाइफ.
0: हाँ जी.
1: तो क्या भूमिका है उसमें और क्या आपने उसमें बताया है, किस तरह से उपयोगी है वो किताब?
0: मिलेट्स फॉर लाइफ जो है पूरा हमारा जो भी अभी तक प्रोजेक्ट में हमने मिलेट, पहले तो उसमें सब कुछ है मिलेट के बारे में, किस तरह से वो लोगों के लिए. मिलेट्स को पता है आपको, मैं बताऊँ, मिलेट्स को हम स्मार्ट क्रॉप बोलते हैं. हाँ, सुपर फूड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं इसे स्मार्ट क्रॉप? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये हम मनुष्य के लिए बहुत अच्छे हैं. तो मतलब ये ऐसा है कि एक तीर से दो नहीं, कई कई निशाने मार सकते हैं अगर हम मिलेट को उगाएं. तो बेसिकली इस किताब में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया और किस तरह से ये गंगा में फिट बैठती है, गंगा के पर्यावरण, गंगा के जल के संरक्षण में ये फिट बैठती है, उसके बारे में चर्चा है कि किस तरह से हमने इसको अपने गंगा के मिशन से जोड़ा है, कि कैसे ये आपके पानी के संरक्षण, पानी के पोल्यूशन, पानी के कंजर्वेशन, जैव विविधता पे एडिशन कर सकती है. उसके अलावा जो उगाने वाला किसान है अगर उसको इक्विप कर दिया जाए, उसको बीज प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको वैल्यू एडिशन सिखाया जाए, उसको हर तरफ का एक सपोर्ट मिल पाए, तो ये उसके लिए एक लाइवलीहुड का भी बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है. हमारे पास अभी एग्जाम्पल्स हैं, पर आप अगर बोलेंगे बहुत बड़े स्केल में तो अभी हमारी जारी है अभी यात्रा. पर हमने जो सक्सेस स्टोरीज देखी हैं वो सच में दिल को छूने वाली.
1: एक स्टोरी जानना चाहेंगे, सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे.
0: एक सक्सेस स्टोरी ये है, मैं दो बताती हूँ बल्कि. एक तो यही है कि 25 साल बाद हमने जब बीज के बदले बीज का ये किया, तो हमारी एक महिला गंगा प्रहरी है उत्तरकाशी में, तो मुझे याद है कि ऐसे साड़ी में बांध के ले गए लोग अपने सीड्स. और हम आपस में बात कर रहे थे, हम कहते थे आधे लोग तो ऐसी, हमने इतनी मुश्किल से एक को जमा किया, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे फेंक देंगे इधर उधर. पर जितनी औरतें वो अपनी उस साड़ी के चुन्नी के दुपट्टे में बांध के वो लेके गई, सब ने उगाया, सब ने उगाया. किसी के ने बोला मैडम जानवर ने खा लिया, किसी के ठीक से हुए नहीं, किसी का बादल फटा, कुछ अलग अलग अलग एग्जाम्पल हुए. पर कई लोगों ने एक एक पाव उगाया, आधा आधा किलो उगाया, और मतलब वो हमारे लिए इतना. और अब वो हो गया, ये मैं आपको बात अभी से 2 साल पहले की बता रही हूँ, 3 साल पहले की. तो अब जो है उनके पास इतने इतने बीज हो गए हैं कि हम उनसे बोलते हैं हमें भी थोड़ा दे देना, हम और आगे बांटेंगे. और जो हमारे साथ फील्ड असिस्टेंट थे आसपास एरिया के, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो फील्ड असिस्टेंट थे वो उनका एरिया हमारी स्टडी में आता भी नहीं था, वो भी हमसे मांग के ले गए मैडम हमको देना हम अपने गांव में करेंगे, और उन लड़कों ने प्रचार किया। ये जो मेरी किताब है इसमें हमने एक मिलिट्री जो है हीरोज मिलिट्री हीरोज नाम दिया जिन्होंने मिलिट पे काम किया और प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो उनका जिक्र है इसमें कुछ 7-8 लोगों का, उस लेडी की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका भी है, चंपावत से भी एक लेडी है उनका उनका जिक्र भी है। और आपने वेस्ट बंगाल जो ज़्यादातर भात चावल खाने वाले लोग हैं वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ एक गंगा प्रहरी है, बच्चा है एक छोटा सा 23-24 साल का लड़का है, उसने इतना ज्यादा इस मिशन पे काम किया है, उसने कितने किसानों को कन्वर्ट कर दिया जो वहाँ की सूखी भूमि है, और वो सूखी भूमि पहले नहीं थी अब वो ये क्योंकि पानी पड़ना कम हो गया, अब कितना पानी चाहिए राइस उगाने के लिए, तो उसने वहाँ पे 80 महिला किसानों को जोड़ के कई किलो मतलब उसने पूरा जो है इसी का काम में लगा हुआ है वो। अब वो जो है हम लोग उनको जाके वैल्यू एडिशन सिखाते हैं, वो इधर उधर से भी सिखवाता रहता है उनसे, तो वो सब कुछ मतलब वो ऑनलाइन भी करने लगा है, तो इट्स वेरी
1: जैसे अभी हम अलग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं।
0: हाँ
1: अभी उत्तराखंड में तो हम मुख्य रूप से मंडवा और झंगोरे को ही जानते हैं।
0: हाँ हाँ
1: इसके बहुत से प्रकार हैं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: तो जैसे वेस्ट बंगाल है
0: हाँ।
1: वहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हाँ। वहाँ किस खास तरह का मिलेट होता है?
0: देखिए मैं बताती हूँ, अगर हम डिफाइन करें मिलेट को ना, तो मिलेट दो प्रकार के हैं। वैसे तो वेराइटीज बहुत हैं, 200 से ऊपर ज्यादा वेराइटीज हैं, पर जो अभी जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं खाए जा रहे हैं दो प्रकार के, एक होता है मेजर मिलेट एक होता है माइनर मिलेट। मेजर से आपको नाम से पता चलेगा ज्यादा, मेजर मिलेट ऐसे हैं जो ज्यादा एरिया में उगाए जा रहे हैं जिनका साइज भी बड़ा होता है और इनके बाहर छिलका नहीं होता है, तो इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी आसान होती है। इनकी प्रोसेसिंग आसान है इसीलिए थोड़ा ज्यादा उगाए जा रहे हैं। इसमें आते हैं आपके जवार बाजरा और मंडुआ, ये मेजर मिलेट है। ज्यादातर इन मिलेट को हम आटे के फॉर्म में खाते हैं, रोटी के फॉर्म में आटा बना के खाया जाता है इनको, और इनकी प्रोसेसिंग क्योंकि इसकी बाहर का छिलका इतना सख्त नहीं होता है तो ये जो है लोग उगाना पसंद भी करते हैं, बहुत सबसे ज्यादा फॉडर के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है ये। दूसरा हो गया माइनर मिलेट। माइनर मिलेट जो है उसको मिलेट राइस भी कहा जाता है, वो चावल की तरह खाए जाते हैं। वो जो है उसमें भी आपके 6 प्रकार हैं, तो जो है 6 प्रकार के मिलेट हैं उसमें, एक तो आपका झंगोरा ही हो गया जिसको हम बार्नियार्ड मिलेट कहते हैं, एक कोणी हो गया जिसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, एक लिटिल मिलेट होता है जो यहाँ नहीं होता है, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है पर उसको यहाँ भी उगाया जा सकता है, और एक हो गया ब्राउन टॉप मिलेट, ये भी ज़्यादातर साउथ इंडिया में उगता है, एक हो गया कोडो मिलेट जो कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नंबर वन है। कोडो मिलेट के तो बीज खत्म हो गए थे दुनिया से, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीज आज सारी दुनिया में घूम रहे, छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल से बीज लिए गए थे ये थी, तो ये। और एक प्रोसो मिलेट चेना, चेना भी हमारे उत्तराखंड में उगाया जाता है, वो भी विलुप्त हो गया, नहीं मिलता है बहुत किसी, मेरी नानी के पास थे बीज, वो बेचारी को मरे हुए आज 25 साल हो गए, उनके जब कमरा साफ किया गया तो एक थोड़े से बीज उनके कमरे में मिले। हाँ तो मतलब कि उन्होंने रखे थे ये सोच के कभी उगाया जाएगा, उस बेचारे ने कभी उन बीजों ने कभी खेती नहीं देखी। तो मेजर मिलेट और माइनर मिलेट, ये जो माइनर मिलेट है ना ये दवा है। मेजर मैं अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये दवा का काम करते हैं श्री अन्न।
1: जैसे अभी आपने हेल्थ पर भी बात कर रहे हैं, औषधि पर भी हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम पर हम बात करना चाहेंगे, तो जो इकोसिस्टम है क्योंकि इकोसिस्टम गंगा उसी का पार्ट है।
0: हाँ जी बिल्कुल हाँ।
1: और जैव विविधता भी पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है।
0: हाँ।
1: तो जो मिलेट है वो इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कितना योगदान है मैम, क्योंकि आप उस पे लगातार काम कर रहे हैं।
0: हाँ देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली हमारे लिए, हमारे संदर्भ में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो मिलेट जो है जैसे मैंने बोला क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, कम से कम जो है इनको सुविधा चाहिए उगने के लिए, पानी जैसे मैंने बोला इनको 10% कम लगता है, 10 जितना पानी एक साल आप धान में लगाएंगे वो 20 साल तक ये उगते रहेंगे, इनमें आप कोई किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालते। जो इनकी जड़ें हैं ना, जड़ें सिस्टम इतना, रूट सिस्टम इतना डीप होता है इनका कि ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, मतलब बहुत जो इन, और इनकी जड़ों में जो है किसी तरह के फंगस पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो वहाँ की सॉइल की उसको न्यूट्रिशन को बहुत रिच करते हैं और जैव विविधता बढ़ाती है वहाँ के। और दूसरा चीज़ इनका ये है कि जहाँ पर ये उगते हैं आपकी चिड़ियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि जो ये होती है ना सीड ईटिंग बर्ड्स, उनकी विविधता बहुत दिखेंगी आपको, मतलब लोग इससे ना घबराएं कि भाई वो चिड़िया आएंगी तो दाना खा जाएंगी, नहीं, वो चिड़िया उनका चौकीदार भी है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब आपने एक ही एरिया में हुआ है सारी चिड़िया आके खा के चलेगी, क्योंकि चिड़िया को भी मिल गया उसका फेवरेट खाना, यू नो। पर जब आप पूरे में उगाएंगे कितना खा जाएगी चिड़िया, ऐसा नहीं है। तो जहां पे वहां पे आपके और जो चिड़ियाओं की ड्रॉपिंग्स होती है उससे वहां की सॉइल और भी रिच होती है, उस नाइट्रेट जो वो ड्रॉप करते हैं, तो उससे वहां की, तो वहां की जैव विविधता मिट्टी में भी बढ़ी, बाहर भी बढ़ी। और ये जो है इनको एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है सी फॉर, ये घास होते हैं ये जो, इनको सी फॉर ग्रासेस बोला जाता है। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगी सी फॉर ग्रासेस क्या होते हैं। सी फॉर ग्रासेस एक तरह का कार्बन सिक्वेंसिंग है जिससे कि पौधा जमीन से किस तरह से पानी लेता है और वो हवा में किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो पृथ्वी है ना उसमें भगवान ने, नेचर ने ऐसा बैलेंस किया कि सी फॉर क्रॉप्स दी हैं। क्यों? ये भी एक सी फॉर क्रॉप्स है क्योंकि सी फॉर क्रॉप क्या करती है, कम इस तरह से पानी लेती है कि पानी वेस्ट ना हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कम छोड़ती है हवा में। तो जहां ये सी फॉर ग्रासेस होती है वहां पे हवा भी शुद्ध होती है। तो इस तरह का आप सोचिए कि पर्यावरण से इस तरह से ये लिंक है
1: इसका नाता है।
0: हाँ तो
1: बहुत बढ़िया लग रहा है मैम आपसे बात करते हुए, और मिलेट के बारे में तो काफी जानकारी आपके पास है, और मुझे लगता है कि मैंने तो उसमें से मुश्किल से 2% जानकारी आपसे ले पाया हूँ।
0: और
1: अभी हम जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं, कितनी और जरूरत है, क्योंकि जो आपने मुझे मैप दिखाया है मेरा ध्यान उसी पर ही टिका हुआ है कि एक समय में अपने देश में इतना मिलेट था, आज जो आप बता रहे हैं कि उसका जो ग्रीन वाला जो पार्ट है उसका भी 10% भी नहीं रह गया है, 9% आप बता रहे हैं।
0: हाँ जी, हाँ।
1: पूरी एग्रीकल्चर का 9%
0: जो तो कल्टीवेशन एरिया का।
1: कितनी जागरूकता की जरूरत है, और जागरूकता के लिए क्योंकि आप मिलेट फिर लगातार काम कर रहे हैं, 10 साल से आप काम कर रहे हैं क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ ही आप काम कर रहे हैं, तो अभी कितनी जरूरत और महसूस करते हैं।
0: बहुत बहुत। आप देखिए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के आसपास आया था, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, उस रेवोल्यूशन का हम असर अब देख रहे हैं। तो कोई चीज इतना इंटेंसिव, इतना प्रोएक्टिवली करना है ना, ये सबको करना है। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ अब तो सबको पता ही होगा मिलेट के बारे में, पर फिर भी मैं जब कभी किसी अनजान से मिलती हूँ उसको पता ही नहीं होता मिलेट क्या, उसे पता ही नहीं है कि मिलेट कौन सा अनाज को हम मिलेट बोल रहे हैं। मैं मतलब कि मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ जो है लोगों के पूरे अंदर तक घुस जाए कि मिलेट सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये जो है एक जो हमारा पूरा इकोसिस्टम का तंत्र है ना, उसमें कृषि विविधता, जैव विविधता, हमारे पारंपरिक और ट्रेडिशन संस्कृति का एक बैलेंस है ये, यू नो। बाकी चीजें जो भी हो बाद में आई गई हैं, तो ये तो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि बहुत इंटेंसिवली प्रोएक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक इकोनॉमिक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई नहीं करेगा। अभी कुछ दिन मुझे लोग कह रहे थे कि भैया लोगों ने गढ़वाल में कीवी उगाना शुरू कर दिया, और मुझे इतनी तकलीफ हुई इस बात से, उस किसान को पैसा बहुत मिल रहा होगा कीवी उगाने से, मैं कह रही क्यों किया उसने, मतलब कि मिलेट क्यों नहीं उगा पाया। तो कहीं ना कहीं वही सप्लाई चेन में कमी है, तो उसको नहीं फायदा लग रहा है उसको उगाने में। तो बहुत लंबा सफर है, पर उम्मीद है अभी भी,
1: उम्मीद अभी बनी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे मिलेट पर, तो मिलेट का जो हेल्थ एस्पेक्ट उस आयाम पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी तो हम पर्यावरण पर काम कर पाएंगे, अपनी इस धरती के लिए काम कर पाएंगे। तो जो स्वास्थ्य के नजरिए से हम मिलेट को कह पाते हैं,
0: किसी ने ना एक यूएन में जो हेड थे उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, किससे भी रिलेटेड है, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा कि उसको करने वाला इंसान जब तक हेल्दी ना हो, कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। और ये क्रॉप जो है ये ना किसान और हमारी खेती और हमारी सेहत का इंश्योरेंस है। कैसे है ये इंश्योरेंस हमारी खेती का, हमारी सेहत का? जो डॉक्टर खादर वली है ना, डॉक्टर खादर वली का जो उनको मिलेट, उनको 2023 में पद्मश्री दी गई थी और उनको जो है फादर ऑफ मिलेट कहा गया, सिर्फ इसलिए वो पिछले, आप कह रहे हैं ना कितना समय लगेगा, वो पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं तब यहाँ पहुंचे हैं। तो उनका उन्होंने ना 120 प्रोटोकॉल बनाए हैं. आप मतलब उस प्रोटोकॉल को, वो उनकी वेबसाइट में है, उस प्रोटोकॉल को आप पढ़ेंगे तो सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, कैंसर तक का इलाज है इसमें. और वो कहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया जो माइनर मिलेट है हमारा, प्रोसो को छोड़ के जो 5 माइनर मिलेट हैं, वो कहते हैं वो एक्चुअल श्रीधन है. उसको हीलिंग मिलेट कहा जाता है. हीलिंग मिलेट मींस वो आपकी कोई भी बीमारी ठीक कर देंगे, चाहे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है. शुगर ब्लड प्रेशर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. वो आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका थायराइड ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो अनाज है वो आप इस तरह से उनकी बनावट है, उनमें इतना ज्यादा रेशा जिसको फाइबर कहा जाता है वो है. और रेशा ऐसा नहीं है कि बाहरी बाहर हो, अंदर तक बुना हुआ है वो रेशा. जब आप वो अनाज खाते हैं ना, तो आपने गट माइक्रोबायोम के बारे में सुना होगा, जो हमारी आंतों की माइक्रोबायोम होती है. हमारी माइक्रोबायोम कहते हैं कि अगर वो डिसबैलेंस हो जाए सारी बीमारियां आपको होंगी. डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो छोड़िए, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो गट, अल्जाइमर है तो गट जिम्मेदार है, हर चीज का गट जिम्मेदार है. तो इन अनाजों को, हीलिंग अनाज जो आपको ठीक करते हैं, वो कहा गया है. ये जो खासकर ये 5 अनाज है, ये इसका जो फाइबर है वो गट माइक्रोबायोम को फीड करता है. इसमें ऐसा फाइबर है, और वो फाइबर जो है, जब आपके गट माइक्रो में डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के आप मिलेट खाएंगे, अलग अलग तरह के आपके अंदर रेशा जाएगा, तो आपका गट माइक्रोबायोम बहुत रिच होगा. और जब गट माइक्रोबायोम रिच होगा आपका, तो आप उतने ही हेल्दी होंगे, आपकी अलग अलग बीमारियां एड्रेस होंगी. तो इसको जो है हीलिंग मिलेट कहा गया. ये सेहत के लिए इतनी अच्छी है.
1: बहुत अच्छी जानकारी मैम आपसे मिली है. और अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती अनुपमा कुलियाल जी से. आप इस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से आप जुड़े हैं, 10 साल आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो गए. मैम चलते चलते आपका एक संदेश जानना चाहेंगे मिलेट को लेकर युवाओं के लिए.
0: युवाओं के लिए मेरा संदेश, जैसे मैंने ये कहा कि आप चाहें ना चाहें इसे तो अपनाना ही पड़ेगा. मतलब नेचर ने वो कंडीशन क्रिएट कर दी है कि ये हमें अपनाना ही पड़ेगा, और ये ही हमारा भविष्य है. ये अनाज है हमारा भविष्य. ये अनाज इसलिए हमारा भविष्य, ये हमारे किसान का भविष्य है, ये हमारी सेहत का इंश्योरेंस है. तो इसको तो अपनाना ही पड़ेगा, देर सवेर ही अपनाना ही पड़ेगा.
1: मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और आपने अभी हमें मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, आपने उसके इतिहास के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि आज हम किस स्थिति में है, जागरूकता का क्या स्तर है, और लोग मिलेट के प्रति जो श्री अन्न है उसके प्रति कितने जागरूक हुए हैं, उसके बारे में भी आपने बताया. और आपने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से हम हस्तक्षेप करें, हम उसमें दखल करें कि हम इसको आगे बढ़ा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें, और इसका जो डिमांड और जो सप्लाई का रेशियो है वो कहाँ गड़बड़ाया हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों का क्या समाधान है. जैसा कि आपने वैल्यू एडिशन के बारे में बताया, आपने मिलेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, और आपने एक खास बात ये बताई कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उससे मिलेट कहाँ जुड़ा हुआ है, किस तरह से लोगों को एम्पावर करता है. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करते हुए. रेडियो कदार को आपका मूल्य समय दिया है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. धन्यवाद बहुत.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।
1: हाँ।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

क्या आप अपने बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, मानव भारती स्कूल देहरादून में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें। मानव भारती स्कूल CBSE से संबद्ध 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम के साथ खेल, कला और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। हम आपसे करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का वादा। एडमिशन की सीमित सीटें हैं, आज ही संपर्क कर सकते हैं। मानव भारती स्कूल, डी ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, देहरादून। हमारा फोन नंबर है 7455088122।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।

रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार।